और जिसका नामा आमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोजख में दाखिल होगा। वो अपने अहलो आयाल ही में मगन रहता था, वो तो ख्याल करता था कि अल्लाह की तरफ लौट कर न जाएगा। क्यों नहीं, उसका परवरदिगार तो उसको देख रहा था। सो मैं शाम की सुर्खी की कसम खाता हूं और रात की, और जिन चीजों को वो इकट्ठा कर लेती है उनकी, और चांद की जब वो पूरा हो जाए, कि तुम लोग दर्जा बदर्जा जरूर चढ़ोगे। तो इन लोगों को क्या हुआ है कि ईमान नहीं लाते, और जब इनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते। चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई है, लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है।

0: और हम तुमको आसान तरीके की तौफीक देंगे, सो जहां तक नसीहत के नाफे होने की उम्मीद हो नसीहत करते रहो। जो खौफ रखता है वो तो नसीहत हासिल करेगा और बेखौफ बदबख्त उससे कतराएगा। जो बड़ी तेज आग में दाखिल होगा फिर वहां न मरेगा और न जिएगा, बेशक वो मुराद को पहुंच गया जो पाक हुआ और अपने परवरदिगार का नाम लेता रहा और नमाज पढ़ता रहा। बात यह है कि तुम लोग तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। यही बात पहले सहीफों में भी दर्ज है, यानी इब्राहिम और मूसा के सहीफों में।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद आई होंडा शोरूम मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस सर एथलेट जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग

0: 0320180003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
2: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372, 0242-460100।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: आए। अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमरीकी सदर है तो ईरान खिते बन मुल्क की दरख्वास्त ईरान मथा हमला रोके छाया ईरान खिलाफ कार्रवाई जो इख्तियार असट मौजूद है पर जल्द मुआदो थी वो तो ईरान से हमला न कंदी मामलो थे बद आबन फौरी मुकम्मल ए मुस्तकिल तौर से खोलो वो।
2: आजाद कश्मीर में चूंडन के बे मरहल में मुजफ्फराबाद डिवीजन के नव ए मुहाजरन के 12 सीटों से पोलिंग जो अमल शुरू। पोलिंग जो अमल सुबह 8 वगे का शाम 5 वगे ताई बिना वक्फे के जारी रहो। मुजफ्फराबाद डिवीजन के टिन जिले मुजफ्फराबाद नीलम ए जेलम वैली के नव तकन से 8,90,621 वोटर वोट जो आइनी हक इस्तेमाल कंदा। नव दक्कन से पीपुल्स पार्टी नवाज लीग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ए बिन सियासी आजाद उम्मीदवार समेत 208 उम्मीदवार मैदान में लथल। पाकिस्तान में तरसल कश्मीरी मुहाजरन की 12 सीटों से भी पोलिंग अज थी रही है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो चवण है तो मुजफ्फराबाद में अमन अमान की सूरत हाल नॉर्मल है। सिक्योरिटी जहा इंतजाम भी इंतहाई सख्त क्या वा।
1: पाबंदी मरियल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ट्रुथ एंड रिकनसिलेशन कमीशन से राजी थी वही है। एक्शन कमेटी जवाबी खत मानी थी पांजू तजवीजू भी दई छड़ी आन। हर कीमती जान जाया थियण कौमी साने आए अवाम के तुरंत रिलीफ मिलन घुर्जे। इन वक्त पेरी तरजीह यही है तो मौजूदा बोरान के खात्मे में मदद कई वे। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो समाजी राबतन वाली वेबसाइट एक्स ते पैगाम। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चो तो आजाद कश्मीर के कानून साज असेंबली भी कमीशन की मंजूरी दई चुकी है। आजाद कश्मीर के वजीर अजम से भी मशावरत कई वेंदी यो वफाकी हुकूमत का राय वठंदो। खबर पेजी सकंदी तो तजवीज के अगते वधाण लाए गडियल बुनियाद मौजूद है या न।
2: वजीर आजम के सलाहकार राना सनाउल्लाह जो पीपुल्स पार्टी ते वाद। शहीद जुल्फकार भुट्टो मथा मुल्क टोड़े वजीर आजम थियण जो इल्ज़ाम भी लगाए छो। घरू वजीर मोहसिन नकवी ते भी तनकीद। मुजफ्फराबाद में चूंड जलसे के खिताब कंदे राना सनाउल्लाह चयो तो जेकर तवां नवाज शरीफ के चवंदा तो सदाई दांदली करे वजीर आजम थियो आए तो पोइ हिते हीअ ॻाल्हि बि थींदी आहे त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वजीर आजम थियो हो। वजीर आजम के वोटन के अवां फार्म 47 जो सदींदा तो बुधायो सदर के मिलियल वोट कड़े फार्म जन। सरदारी साहब जो बो फर्ज चे रो है तो सिस्टम खत्म थी चुको है। अगते न वधी रो है इकदार जा मजा वठण बाद ओचितो खैन सिस्टम खराब लगे तो जेका अजीब गाल है।
1: वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात मुल्क की मजमुई सूरताल से तफसीली ख्याल की दे वठ। वजीर आजम ऑफिस के पधराई मूजिब रायवन लाहौर में थियल मुलाकात दौरान वजीर अला पंजाब मरियम नवाज ए नायब वजीर आजम इसाक डार भी मौजूद हुआ।
2: पीपुल्स पार्टी सिंध वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी का उहिदो छॾण जो मुतालबो करे छॾियो। निसार अहमद चयो आहे लॻापियल सूबाई असेंबली में ठहराउ मंज़ूर थियण ताईं नओं सूबो नथो ठही सघे। नओं सूबो ठाहिणो आहे त पंजाब में ठाहियो जिते माज़ीअ में ठहराउ मंज़ूर कयो वियो। गैर आइनी ॻाल्हियूं कंदड़ माण्हू क़ौम जा दुआई तसवुरु थींदा फ़ौज सियासत खां लातलुकी जो बयान ॾिनो। घरू वज़ीर फ़ौज खे बदनाम पियो करे निज़ाम कमज़ोर थियण खां जूं ॻाल्हियूं कंदड़ घरू वज़ीर खे हुकूमत में न रहणु घुर्जे। आइबर सिस्टम जी तारीफ़ कंदड़ पार्लियामेंट ऐं ईमान में छो वेठो आहे। सूबाई वज़ीर सईद गनी चयो आहे त नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ऐं मरियम नवाज खे दांदली करे खटरायो वियो। हेरात में मिलियल सीटुनि वारा बि पीपुल्स पार्टी ते तनक़ीद करे रहिया आहिनि। बंगलादेश छाने में शहीद भुट्टो मुलवस हुजे हा त ज़िया खेस कूड़े केस में फाई ॾियण बदिरां बंगलादेश छाने वारे केस में फाई ॾे हा। सुभाउ ठाहिण जो इख़्तियार का फर्द या पार्टी वटि न पर असेंबलियुनि वटि आहे। सिंध जो आवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदा कंहिं बि सूरत में नओं सूबो नथा चाहिनि।
1: नवा सूबा असांजी ख़्वाहिश न पर पाकिस्तान जी मजबूरी आहिनि। पाकिस्तान में मसलनि जो तूफ़ान आहे। हिकु वफ़ाक ऐं चार सूबनि वारे सिस्टम सबबि वसीला घटिजी विया आहिनि। एम क्यूएम अॻवान ऐं वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त महरूमियुनि सबबि माण्हू रियासत ख़िलाफ़ थी रहिया आहिनि। बद इंतिज़ामीअ सबबि मुल्क में मसइला वधी रहिया आहिनि।
3: सहाफत से आप आ गए, निगरान वजीर आला, निगरान वजीर आला से आप आ गए क्रिकेट बोर्ड के सरबरा, फिर इंटीरियर मिनिस्टर बन गए। आपकी स्पेशलिटी है या आप हॉकी के खिलाड़ी हैं और आप क्रिकेट वालों को मशवरा दे रहे हैं? आपको तो कंचे खेलने का पता नहीं है और आप वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का मशवरा दे रहे हैं। आपको पता नहीं किसने फीड किया है। कोई बैरूनी मुल्क ताकतें तो आपके पीछे नहीं है जो आपको मिसगाइड कर रही है। पाकिस्तान को जरूरत है जोड़ने की। आप एक जगह आग जलाकर भाग के फिर दूसरा नुक्कड़ पे आग लगाने पहुंच रहे हैं। सिंध में भी आग लगाना क्यों चाहते हैं मुझे बताएं? किसकी ख्वाहिश होनी चाहिए? इस वक्त

0: जावेद लतीफ़ चयो त हिन वक़्तु मुल्क खे जोड़ण जी ज़रूरत आहे, पर मोसन नक़वी वरी बाह लॻाइण जी ॻाल्हि पियो करे। जाचणु घुर्जे त कंहिं जे एजेंडा ते कम करे पियो। हुकमरान मुल्क नथा हलाए सघनि त घर हलिया वञनि ऐं बाद में शफ़ाफ़ चूंडियूं करायूं वञनि।
1: पाकिन दोस्ती आज़मायल ऐं हर वक़्त ते पूरी लहंदड़ आहे। पाकिस्तान ऐं चीन जी फ़ौज बि इलाक़ाई अमुन ऐं गॾियल मफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ हक़ीक़ी भाईवार आहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पीपल्स लिबरेशन आर्मीअ जे 99 सालगिरह तक़रीब खे ख़िताब। फील्ड मार्शल चयो त पाक चीन दोस्ती ऐं मुनफ़रद आज़मायल आहे, इलाक़ाई ऐं आलमी चैलेंजिस बावजूद मज़बूत रही आहे। तकरीब के खिताब कंदे चीनी सफ़ीर दहशतगर्दी खिलाफ़ वेड़ में पाक फ़ौज जी कुर्बानी जी साराह कंदे चयो त पाकिस्तान सां भाईवारीअ खे वधीक मज़बूत कयो वेंदो। तकरीब दौरान चीन जे पीपल्स लिबरेशन आर्मीअ जी 99 सालगिरह जो केक बि काटियो वियो। तकरीब में टिनी हथियारबंद फ़ौज जे सीनियर आफ़ीसरनि बि शिरकत कई।
0: सिक्योरिटी फोर्सिस जूं केपी ऐं बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं, 12 दहशतगर्द मारिजी विया। दहशतगर्दनि सां विढ़ंदे पाक फ़ौज जो हिकु बहादुर मेजर बि शहीद। ISPR मूजिबि उत्तर वज़ीरिस्तान में कार्रवाई कंदे 5 भारतीय 65 खारिजी दहशतगर्दनि खे जनमु भेड़ो कयो वियो। शदीद फायरिंग जे ॾे वठ में मेजर हाफ़िज़ अहसान शहीद थी वियो। बलोचिस्तान जे ज़िले नौशकी में ऑपरेशन दौरान अफ़गान ते बमबार समेत 7 भारतीय हिमायत याफ़्ता दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी वियल खारिजी दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सिस कानून लागू कंदड़ इदारनि ऐं बेगुनाह शहरियुनि ख़िलाफ़ दहशतगर्द कार्रवाई में मुलवस हुआ, जंहिंजे कब्ज़े में हथियार ऐं बारूदी मवाद हथ कयो वियो।
2: पब्लिक सर्विस कमीशन सिंध की गुज़िश्ता 15-20 साल से सिंध में मेरिट कुचल दिया गया है। नेपोटिज्म सिफारिशाती से भी पूछ लें।

इतवार बाजार या जुमा बाजार बनाए हुआ, इतवार बाजार इसका नाम लिख देना। उस टेबल पे साहब लोग आए, वो आके कहें लो भाइयों बहनों खवातीन हजरात, अभी बिक्री के लिए मौजूद है सीसी की, डीएसपी की पोस्ट, बोले लगाओ। वो कहे

0: गई, जिस तरह नीलांगर खोले जिसका नाम क्यों रखा हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस खिदमत इसका नाम रखे ना पब्लिक के खिलाफ ब्रूटैलिटी की कमीशन। तो दो डिकेड से जिन जिन लोगों को नौकरियां बेची गई हैं उसके जिम्मेदार सिंध के हुक्मरान हैं, उनसे जवाब तलबी होनी चाहिए।
1: हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में करप्शन है, पांजा नवाज के खिलाफ उम्मीदवार है शागिर्दन जो एहतजाज जारी। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ अली जे पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की एहतजाजी कैंप ते आमद। शागिर्दन की जदोजहद में साथ दियण की खातरी अयाज लतीफ अली जे चयो आए त कमीशन नीलाम घर बणजी वई आए, जिते नौकरियों जो सौदो थी रो आए ही नौकरियों विकण की जुम्मा बाजार या आचर बाजार बणियल लगा पिया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो नालो मटाए अवाम आजार कमीशन रखी छो।
2: शिकारपुर ऐं बेपुर खास में टिन निगरियुनि सां मुबिना ज़ियादत थी। ठारोपुर महल में 10 सालनि जी निगरी खे वैशिक जवाबदार घर में अकेलो ॾिसी ज़ियादती जो निशानो बणायो। निगरी अस्पताल मुंतकिल डॉक्टरियाणी पारां ज़ियादती जी तस्दीक। निगरी जे वालिद चयो आहे त धीअ खे हज़ार खान सुमरो ज़ियादती जो निशानो बणायो आहे। मीरपुर खास जे हीराबाद वारे इलाइक़े में हिकु जवाबदार ॿिनि निगरियुनि खे मुबिना ज़ियादती जो निशानो बणायो। मुतासिर निगरियुनि जे वालिद मोहम्मद आबिद जे फरियाद ते केस दाख़िल, पुलिस कार्रवाई कंदे इल्ज़ाम हेठि आयल जवाबदार ख़ान मोहम्मद उर्फ़ ख़ानू खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस जो चवण आहे त मेडिकल रिपोर्ट अचण बैदि वधीक कार्रवाई कई वेंदी।
3: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब है जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
6: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
0: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
7: Ashik Honda Showroom Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Jupur Atmat. Aimba Akhtar 3S Dealer. आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई। 03073592120।
0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
5: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जी एफ एम 94।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीए जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
0: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाने यचो मेरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 and 02424601000।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013808347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94। अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आजाद कश्मीर में चूंडन के बे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के नव ए महाजरन के बारह सीटों से पोलिंग जो अमल जारी। पोलिंग जो अमल शाम पंज वगे तक बिना कें वक्फे के जारी रहंदो। मुजफ्फराबाद डिवीजन के टिन जिलों मुजफ्फराबाद नीलम ए जहलम वैली के नव तकन से 8,90,621 वोटर वोट जो आइनी हक इस्तेमाल कंदा। नव तकन से पीपुल्स पार्टी, नवाज लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ए बेन सियासी आजाद उम्मीदवार समेत 208 उम्मीदवार मैदान में लथल। पाकिस्तान में तरसल कश्मीरी मुहाजरन के बारह सीटों से भी पोलिंग अज थी रही है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का चवण है तो मुजफ्फराबाद में अमन अमान की सूरत हाल नॉर्मल है। सिक्योरिटी जा इंतजाम भी इंतहाई सख्त किया वा। पाबंदी मड़ियल जॉइंट एक्शन कमेटी ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन से राजी थी वही। एक्शन कमेटी जवाबी खत मानींदे तजवीजू भी दई छन। हर कीमती जान जाया थे कौमी सान्यो है। अवाम के तुरंत रिलीफ मिलन घुर्जे। इन वक्त पेरी तरजीह यह है तो मौजूदा बहरान के खात्मे में मदद की वे। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समाजी राबतन वाले वेबसाइट एक्स से जारी कल पैगाम में आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली पे कमीशन की मंजूरी दे चुकी है। आजाद कश्मीर के वजीर आजम से भी मुशावरत कई वी। यो वफाकी हुकूमत का राय वो खबर पैजी सी तो तजवीज के अगत बुनियाद मौजूद है या ना।

कराची में अज तेज बरसात जो इम्कान। मौसमियात खाते मूजिब 24 कलाकन अंदर कराची में बरसात पैजी सके थी। कराची में गर्मी पैदा 28.8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में घिम 78% रिकॉर्ड किया।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज, GAFM 94।

0: मेरा व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान के एटमी प्रोग्राम जो खात्मो शामिल हों, इसराइल भी ईरान ते हमला रोकने ते तफा किया है। अमेरिका या इसराइल की जारियत जो भरपूर जवाब दिनों वो ईरानी परदेही वजीर जो सऊदी तुर्क परदेही वजीर से फोन ते राबते दौरान पैगाम। अब्बास अराग़ची चयो तो अमरीकी जारियत में इलाके जा मुल्क शामिल थिया तो उन्हें भी सख्त रद्दअमल दींदासीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर सां भी फोन ते गाल बोल कई वही है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मशीर चयो है तो ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर ते हमला कया वया तो असर जंग के मैदान का बाहर तई वा। मगरबी ताकतन पारा 250 साल में ठायल ग्लोबल ऑर्डर तबाह किया वेंदो।

पाबंदी मरियल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन से राजी थी वही है। एक्शन कमेटी जवाबी खतो माणींदे पांजी तजवीजू भी दई छडियो आहिनि। हर कीमती जान जाया थियण कौमी सानियो आहे। अवाम के तुरंत रिलीफ मिलण घुर्जे। इन वक्त पहिरीं तरजीह इहा आहे त मौजूदा बोहरान जे खात्मे में मदद की वञे। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो समाजी राबतन वाले वेबसाइट एक्स पैगाम। बिलावल भुट्टो चयो त आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली भी कमीशन की मंजूरी दई चुकी है। आजाद कश्मीर के वजीर आजम सां भी मुशावरत कई वेंदी। यो वफाकी हुकूमत खां राय वठंदो। खबर पैजी सघंदी तजवीज के अगते वधाइण लाइ गडियल बुनियाद मौजूद है या ना।

कराची में अॼु तेज बरसाति जो इम्कान मौसमियात खाते मूजिब 24 कलाकनि अंदरि कराची में बरसाति पइजी सघे थी। कराची में गर्मी पद 28.8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कयो वियो। हवा में घिम 78% आहे।

घोटकी ए सोबतपुर में वाहन के घारा सवें एकड़ फसल पानी हेठ घोटकी में महेसर वाह के घारो लगी वो सवें एकड़ से बीठल फसल पानी हेठ अची वो गोठ बरादी मीरानी वट महेसर वाह के घारो लगो सोबतपुर वेझो बे मांझोटी शाख के पंजा फुट घारो सरल फसल पानी हेठ गोठ फजलदीन कोसो वट मांझूटे शाख के पंजा फुट घारो लगी वो घारो लगन सब सवें एकड़ से बीठल सारे फसल पानी हेठ अची वो खैरपुर में बदमनी खिलाफ शहर जो ओल्ड नेशनल हाईवे से एहतजाज मुजाहिरन तो शहर में फुरू धाड़ा रोज जो मामूल बणजी वया पुलिस अगोड़ नंढ सुतल है नोटिस वी बदमनी से जब्तो आंदो वे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300338569।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़, GA FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इना के वक्फे जे जारी रहंदो मुजफ्फराबाद डिवीजन जे टिन जिलन मुजफ्फराबाद नीलम ए जहलम वेलिए जे नव तकन ते 8,90,621 वोटर वोट जो आईनी इस्तेमाल हक इस्तेमाल कंदा। नव तकन ते पीपल्स पार्टी नवाज लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ए बेन सियासी आजाद उम्मीदवारन समेत 208 उम्मीदवार मैदान में लथल। एले 27 ते मुजफ्फराबाद ते पोलिंग मुलतवी। मौसम की सूरत हाल ए लैंडस्लाइडिंग सबब पोलिंग जो सामान न पहुंची सको। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकन में भी तरसल कश्मीरी भी वोट जो हक इस्तेमाल कर रहा है। रावलपिंडी गुजरांवाला हैदराबाद सखर नवाबशाह सांगढ़ टंडवालिया नौशर फिरोज देहरकी प्रयालो गंबट मीरपुर माथिलो ए कुंडरी में पोलिंग अमल जारी। पीपल्स पार्टी जो एले 32 ते धांधली जो इल्जाम। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर जे इलेक्शन सेल जे इंचार्ज इल्जाम लगायो त एले 32 में पोलिंग स्टेशन 24 ते नून लीग जा कारकुन बेल पेपर्स ते ठप्पा लगाए रहा है। पीपल्स पार्टी अगवान शेरी रहमान चयो आहे त इलेक्शन अमले जी देर सबब वोटर्स परेशान आहिन। केतरनि पोलिंग स्टेशन ते पोलिंग अमल देर जो शिकार आहे। खास तौर ते एले 25 28 31 34 जो केतरियूं ई पोलिंग स्टेशन देर जो शिकार आहिन। हसास करार डिनल औरतुन जी पोलिंग स्टेशन ते भी सिर्फ एक पुलिस एहलकार मुकर थियल है।

पाबंदी मलियल जॉइंट एक्शन कमेटी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन से राजी थी वही है। एक्शन कमेटी जवाबी खतों मानीदे तजवीजू भी छदी हर कीमती जान जया थे कौमी सानियो है आवाम के तुरंत रिलीफ मिलन घुर्जे इन वक्त पे तरजीह यहाँ तो मौजूदा बोहरान के खात्मे में मदद की वे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समाजी राबतन वाले वेबसाइट एक्स से जारी कल पैगाम में चयो है आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली भी कमीशन की मंजूरी दे चुकी आजाद कश्मीर के वजीर आजम सा भी मुशावरत की वी इो वफाकी हुकूमत का राय वो खबर पैजी सी तो तजवीज के अगत गडल बुनियाद मौजूद है या न। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान से हमला रोकण जो ऐलान अमरीकी सदर चयो तो अमरीका ईरान से अड़ा हमला करण लाय तैयार है जेके आलमी जंग का न डिठा वया ईरान खिते के बेन मुल्क हमला रद्द करण की दरख्वास्त कई हमला रोकण फौरी मुआहदे से मशरूत आन मुआहदे में अबना हुरमस के फौरी ए मुकम्मल तौर खोलण ईरान के एटमी प्रोग्राम जो खात्मो शामिल हों इसराइल भी ईरान से हमला रोकण से इतफा किया है। अमरीका या इसराइल की जारियत जो भरपूर जवाब दिनों वो ईरानी परदेही वजीर जो सऊदी ए तुर्क परदेही वजीर से फोन से राबते दौरान पैगाम अब्बास राखची अमरीकी जारियत में इलाके जहा मुल्क शामिल थे तो उनके भी सख्त रदअमल डींदी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सा भी फोन से गालबोल थी है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मशीर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर से हमला क्या वह तो असर जंग के मैदान का बाहर ती पखड़ी वा मगरबी ताकत पारा 250 साल में ठायल ग्लोबल ऑर्डर तबाह किया वो। सिंध के मुख्तलिफ इलाक में वसकारो हैदराबाद बदीन मिठी सिरानी शादादपुर दड़ो मिटियारी तलार उडेरोलाल ठठो सामारो झोल टंडो गुलाम हैदर टंडो आदम डिगड़ी कलोई खिपरो मातली मीरपुर भटोरो उमरकोट नंगर पारकर झंडोमरी कड़ो गांवर चूहड़ जमाली में बरसात हेठा वाला इलाका पानी हेठ अची वर्मी जो जोर टुटी वो।

घोटकी ऐं सोबतपुर में वाहन खे घारा, सवें एकड़ फसल पाणी हेठि अची वियो। घोटकी में महसरो वाह खे घारो लॻी वियो, सवें एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि। ॻोठ बरादी मीराणी वटि महसरो वाह खे घारो लॻो। सोबतपुर वेझो बि मञोठी शाख खे 50 फुट घारो, सारल फसल पाणी हेठि अची वियो। ॻोठ फज़लदीन खोसो वटि शाख खे घारो लॻो। ऐं खैरपुर में बदमनी ख़िलाफ़ शहरनि जो ओल्ड नेशनल हाईवे ते एहतजाज। मुज़ाहिरन चयो त शहर में फुरू धाड़ा रोज़ जो मामूल बणिजी विया आहिनि। पुलिस अॻो निंड सुतल आहे, नोटिस वरितो वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल ट्यूब पर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीया जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 0307 3592120।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03

0: इतने बड़े होते ना, बॉस बना दिया जाए, हमें सारे जो है ना वो फैसले करने का हक दिया जाए, तो हम घर में ये चेंजिंग करेंगे, ये तब्दीलियां लाएंगे। तो मुझे जरा आप मुझे ये बताइए, आज अगर आपको 24 घंटे के लिए घर का बॉस बना दिया जाए, तो आप अपने घर में क्या तब्दीलियां लाएंगे? ऐसी कौन सी चेंजिंग जो कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ना घर के सारे जो है ना वो फैसले मेरे हाथ आ गए, तो मैंने अपने घर में ये तमाम चीजें जो है ना वो चेंज कर देनी है। तो आज आप मुझे बताइए, अगर आपको अपने घर में 24 घंटे के लिए वो सारे अख्तियार दिए जाएं जो कि आप चाहते हैं कि हमें मिलने चाहिए, तो आप अपने घर में क्या चेंजिंग लाने वाले हैं? ओके जी, तो आज के संडे को फंडे बनाते हैं, और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आप क्या करेंगे? अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आइए हमारे पेज के ऊपर, आपको वहां पर हमारे प्रोग्राम वाइट एशियन डेज स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, बताइए आप कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं और कहां कहां से सुन रहे हैं। तो बिल्कुल आज के प्रोग्राम का टॉपिक ये है कि आप मुझे बताएं, अगर आपको 24 घंटे के लिए घर का बॉस बना दिया जाए, यानी कि सारे फैसले आपने करने हैं, तो आप अपने घर में क्या तब्दीलियां लाएंगे, क्या चेंजिंग होगी जो आपको लगता है कि मैंने घर में चेंज करनी है ये तमाम चीजें, जल्दी से बताइए। और इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, और मुझे साथ साथ ये भी बताइए कि आप वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करने वाले हैं? अक्सर औकात ऐसा वाला सीन बन जाता है कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, या आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलते नहीं हो, तो जाहिर सी बात है आपको अवेलेबल करानी चाहिए। उसके लिए आपके पास नंबर्स जो है ना वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनके ऊपर बस आप राबता करें और आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए। तो जल्दी जल्दी से आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल जी, नंबर नोट कीजिए 03125025907, और दूसरा नंबर है 03273834309। ये नंबर आप जल्दी से डायल कीजिए। इन नंबर्स के ऊपर रابطہ करने के बाद ऐसा होगा कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ओके जी, तो अवेलेबल कराइए, खूबसूरती का भी जरा ख्याल रखा करिए, ये बहुत जरूरी बातें होती हैं। जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, और बताइए कहां कहां से आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। यहां पर आदिल हमें सबसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं। लिखते हैं कि हम तेरे हिजर में यूं जर्द हुए जाते हैं, लोग तकते हैं तो हम दर्द हुए जाते हैं, हिजर की जर्द रात और लोगों की हम दर्दियां, कुछ जुदाइयां इंसान को अंदर ही अंदर इस तरह बदल देती हैं कि चेहरे की जर्दी भी दिल की कहानी सुनाने लगती है, फिर लोग हाल पूछने लगते हैं, अगर असल दर्द सिर्फ वही जानता है जो हिजर की रातों में गुजरा हो। ओके, और आबिद परियास्तर हमारे साथ मौजूद हैं जी, कहते हैं गुड शो, थैंक यू। नजीर खोसा में सुन रहे हैं बलोचिस्तान से, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। नजीर भाई लिखते हैं कि लोग अपने मूड के हिसाब से अहमियत देते हैं, जब उनका मूड अच्छा हो तो आपका भी मूड जो है ना वो अहम हो जाता है, जब उनका मूड ना हो अच्छा तो आपका पैराग्राफ भी बेमकसद हो जाता है। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। अखलाक भाई हमारे साथ मौजूद, कहते हैं नाइस यो, थैंक यू वेरी मच। मैं तारिक बलोच हमें सुन रहे हैं लाड़काना खान तमासा की ज्वाइन कयो आहे, वालेकुम अस्सलाम, तवां जो प्रोग्राम बुधो पया, थैंक यू सो मच, ये सनो प्रोग्राम बुधो पया। और हमारे साथ हैप्पी मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, कहते माय स्वीट एंड क्यूट आरजे सिद्रा, आप कैसी हैं और तबीयत कैसी है? वेलकम टू शो स्वीटी, आपको भी वेलकम कहा जाता है स्वीटी। अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद, दीदी सकरन से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, और आपको वेलकम कहा जाता है। दीदार अली ब्रोही हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम नाइस दीदार ब्रोही, लाल शाह बड़ी से। ओके जी, वासा भाई हमारे साथ मौजूद है, वासा भाई हेलो, छाला खुशायो सफा, आई तवां के भी चौदह भली करे आया, हैप्पी, कहती है शो इज अमेजिंग, हैव अ नाइस डे जाना, वेलकम टू यू। और उसके अलावा हिंसी हमारे साथ ममताज अली, कहती है अस्सलाम वालेकुम सिद्रा मुस्कान, कैसी हैं आप? आपके साथ आपका साथ खैर से, आपके प्रोग्राम नाई से ही अच्छा जी, सॉन्ग सुना दो शमन अली मिराले का। बिल्कुल जी, आपको वेलकम, कहते हैं शमन का गाना लाजमी आपको सुनाया जाएगा। और कहते हैं दीदार अली बिरोही, जब बारिश का मौसम होता है तो बाहर मुल्क के लोग कहते हैं वाओ व्हाट अ रोमांटिक मौसम, और हम पाकिस्तानी कहते हैं देखना अब लाइट चली जाएगी। सही बात है वैसे। अच्छा भक्त अली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, खुश आमदीद। किशोर भाई कहते सलाम अदा स्मार्ट हाजरा, आज शिकायतूं खणी बुधायो आराम सा तसली सा शिकायतू सब तुझे बुधियो वेंदियो। और वासु भाई कहते बेहतरीन प्रोग्राम अदी सिदरा, थैंक यू। अखलाक भाई कहते आंसर चेंजिंग का पता नहीं, बाकी भांडा फोड़ देंगे किसका। अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिएगा। अच्छा वासा भाई हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। उसके अलावा मोहम्मद जमान आ चुके हैं, वेलकम, दिल से कहते हैं आपको भी थैंक यू। और उसके अलावा एसन अरबानी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम, कहते हैं ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान, आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, आप बताएं आप कैसे हैं, ठीक ठाक है, मजे में। और उनका अलावा चिको आसो मीर तारिक बलोच कहते तव्हां कल मैसेज कयो सी सरमन सिद्धी जो गानो बुधायो तव्हां कोन था हलायो। ओके जी तव्हांजे गाने जी फरमाइश मां कोशिशि कयां थी पूरी कंदासीं, छो त इलाही सारा माण्हू हूंदा आहिनि, इलाही सारी फरमाइशूं हूंदियूं आहिनि, कॾहिं कॾहिं कंहिं कंहिं जूं फरमाइशूं रहिजी बि वेंदियूं आहिनि, सो नाराज़गी जी ॻाल्हि ई कोन्हे का। ऐं तव्हां वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कयो बाबा, सुहिणा सुहिणा थियो। लाड़काने में तव्हां किथे बि वेंदा त तव्हांखे आराम सां मिली वेंदा ही तमामु प्रोडक्ट्स, अगरि न बि मिलंदा त जेके नंबर ॿुधाया आहिनि उन नंबर ते तव्हां राबितो कयो ऐं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते तमामु प्रोडक्ट्स खे अवेलेबल करायो। उन खां अलावा हिते टाइम थियो बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था ऐं उन खां पोइ जल्दी वापसी तव्हांजी मोटी नासी तव्हां करे न मुंहिंजो हिते वेठा हुजो असली ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत होते जाइए।
1: की खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। बिल्कुल जी, आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं और प्रोग्राम में आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहते जा रहे हैं। बिल्कुल जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ये जनाब प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को बताए जाते हैं कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की खूबसूरती किस तरह से बढ़ेगी और साथ ही साथ आप लोगों की खूबसूरती में इजाफा कैसे आने वाला है और खूबसूरती भी ऐसी वाली जो हमेशा आपके साथ रहने वाली है। बहुत से प्रोडक्ट आपने यूज करे होंगे, ऐसा वाला सीन बन जाता है कि अगर आप प्रोडक्ट यूज करते रहते हैं तो आप लोगों को खूबसूरती मिलती है, अगर आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो आपकी खूबसूरती कहीं गायब हो जाती है। लेकिन जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा कोई भी सीन नहीं बनेगा, आप लोगों को जो खूबसूरती मिल गई होगी वो बस मिल गई होगी। तो इसी तरह आपकी खूबसूरती की हिफाजत होती है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं, आप लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, तो जनाब मैंने आज आप लोगों से सवाल जो पूछा है वो जरा आप लोगों को बताते हैं ताकि आप टॉपिक को फॉलो कर सके। तो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि अगर आपको 24 घंटे के लिए अपने घर का बॉस बना दिया जाए तो पहले आप जो है ना अपने घर में कौन सी चेंजिंग जो है वो लाना पसंद करेंगे, क्योंकि एक असल दिली ख्वाहिश होती है कि हमें अगर घर के अख्तियारात मिल जाए तो हम ना अपने घर में ये तमाम चीजें जो है वो चेंज कर देंगे, हमारे ही रूल्स चलने वाले हैं भाई, ऐसा सीन। हाँ बिल्कुल, तो अगर ऐसा बन जाए तो आप मुझे बताएं कि आप अपने घर में क्या चेंजिंग लाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो 888 और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ जनाब व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि जाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्यों ना बताएं, क्योंकि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने मजे के प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती को इतना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। आपने कभी भी इस तरह के कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करे होंगे, क्योंकि जब भी आप मार्केट जाते हैं तो आप लोगों को वाकई बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, नजर आते हैं और आप ज्यादातर कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा इन ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि नेचुरल अज़ा से तैयार किए गए हैं, आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, यानी कि हर स्किन के हिसाब से इन्हें तैयार किया गया है। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम की अगर बारे में बात की जाए तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं। और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जिसे तैयार किया गया है जनाब, एलोवेरा इसके अंदर मौजूद है, मिल्क मौजूद है और एवोकाडो मौजूद है। ये तमाम चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद और बहुत ज्यादा जरूरी भी होती है। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, आपकी स्किन फेयर हो जाएगी और आप ग्लो करते रहेंगे। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है, तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा, सोने से पहले लगाइएगा। और उसके साथ साथ आपको व्हाइट एश ब्यूटी सो भी मिल रहा है और व्हाइट एश फेस वॉश भी मिल रहा है। अब बात यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है कि कुछ लोग साबुन लगाना पसंद करते हैं, कुछ लोग फेस वॉश लगाना पसंद करते हैं। तो आप लोगों के लिए दोनों चीजें व्हाइट एश वालों ने ऐड कर ली हैं। अगर आप सोप लगाते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी सोप लगाएंगे, अगर आप फेस वॉश लगाते हैं तो आप व्हाइट एश फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें, जरा गौर किया जाए बातों के ऊपर, तो व्हाइट एश ब्यूटी सोप जो है वो डिटो कॉपी है व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम की, यानी कि दोनों सेम टू सेम भाई भेण लगंदा है। पर अगर तव्हां व्हाइट एश जो फेस वॉश वठण वञो था तो तव्हां जे ख्याल में इहो ईंदो हूंदो त बाबा असां अगर ही साबुन जो क्रीम जड़ो आ तो ही फेस वॉश असा के दुकानदार किथे ठगे तो कौन थो, दुकानदार किथे असा के गलत प्रोडक्ट तो कौन थो दे। तो यह तमाम जी थोड़ी मां क्लियर कंदी है चाहिए गाल, तो व्हाइट एश जो को फेस वॉश है ना वो ऑरेंज कलर जो थव आई हु छो तो स्पेशली विटामिन सी से तैयार थियल है, विटामिन सी से तैयार थियल है, तो जो जो को कलर आ वो बिल्कुल जी ऑरेंज आहे, इन जे अंदर विटामिन सी आहे, विटामिन ई भी एड थियल आहे, ढो जबरदस्त फेस वॉश आहे, तमा जी स्किन की ब्राइट कंदो, ये एंटी एजिंग जे लाए भी आहे। तो व्हाइट एश जो फेस वॉश अगर तमा इस्तेमाल करण चाहो तो मोस्ट वेलकम, बिल्कुल इस्तेमाल कयो, तमा जी स्किन हमेशा ग्लोइंग रहंदी, तमा हमेशा सुठो सुठो महसूस कंदा, छो तो तमा जी स्किन अगर हेल्दी हुंदी आ, तमा जी स्किन अगर ओके हुंदी आ, तो तमा वाकई सुठो सुठो फील कंदा आहे। सो ही आहे व्हाइट एश जो फेस वॉश, व्हाइट एश जो साबुन तमा नॉर्मली इस्तेमाल करे सको था, जीअं तमा कोई भी साबुन इस्तेमाल कंदा आहियो घर जा सभु भाती लगाए सघनि था। इन खां अलावा व्हाइट एश जो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब तमाम वट मौजूद आहे, डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्ने ट्यूब अगर मां तमाके थोड़ो बुधाईंदी हला
त वही उन्हनि माण्हुनि जे लाइ तयारु कयो वियो आहे जंहिंजे चेहरे ते घणा सारा एकनी हूंदा आहिनि ऐं तव्हांजे चेहरे ते बि दाणा अची विया आहिनि या उन्हनि खे ख़तमु करणु चाहियो था या चलो एकनी त तव्हांजे स्किन ते न आहिनि अॻे हूंदा पर तव्हांजे चेहरे ते एकनी जा निशान आहिनि जेके अञा ताईं मौजूदु आहिनि या फिर तव्हांजे चेहरे ते कोई चोट जो निशान आहे को धक जो निशान आहे को अहिड़ो निशान जेको तव्हां हमेशह चवंदा त बाबा हीउ कीअं ख़तमु थींदो हिन खे बसि रिमूव करणो आहे को सड़न जो निशान आहे नंढपण में को धक लॻो या तव्हांजी स्किन सड़ी पई हुई जंहिंखे तव्हां हाणे ठीकु करणु चाहियो था रिपेयर करणु चाहियो था त हुन जे लाइ तव्हां वटि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आहे ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब ई ख़ासि करे जनाब हिन खे तयारु कयो वियो आहे जड़ी बूटियूं हुन जे अंदरि एड आहिनि मेडिकेटेड फार्मूले सां तयारु थियल आहे तमामु सेफ आहे तमामु ज़बरदस्त आहे तव्हां हिन खे इस्तेमालु करे सघो था डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब तव्हां नालो वठी करे परचेस कयो एक्ने ट्रीटमेंट जे लाइ सफ़ा ज़बरदस्त आहे बिल्कुल सां मेडिकेटेड फार्मूलो आहे हुन खां अलावा तव्हांजे चेहरे ते जेको ब्लैक पोर्ट्स हूंदा आहिनि या फिर ओपन पोर्ट्स हूंदा आहिनि या वरी ब्लैक हेड्स हूंदा आहिनि वाइट हेड्स हूंदा आहिनि एक्नी कहिड़ी बि साइज़ जो हुजे या वरी तव्हांजे चेहरे ते एक्स्ट्रा ऑयल हुजे हीअ सभु चीज़ूं ख़तमु थींदी तव्हांजी स्किन सफ़ा बेदाग क्लियर ऐं गोरी गोरी थी वेंदी सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब खे लॻाइण जे तरीक़ेकार अगरि तव्हांखे थोरा सम्झाईंदी हलां त डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब खे तव्हां ईअं लॻाईंदा तव्हांखे सुबुह जो बि लॻाइणो आहे तव्हांखे राति जो बि लॻाइणो आहे हीउ उहो प्रोडक्ट आहे जंहिंखे तव्हां सुबुह ऐं शाम जो लॻाईंदा यानी कि सुबुह जो बि लॻाईंदा राति जो बि लॻाईंदा लेकिन लॻाइण खां पहिरियां पंहिंजो फेस वॉश करणो आहे हथनि खे चङे तरीक़े सां तव्हां क्लीन कंदा फेस खे चङे तरीक़े सां तव्हां क्लीन कंदा उन खां पोइ जिते जिते निशान आहे जिते जिते एकनी आहे जिते जिते तव्हांजो मसलो आहे न यानी कि को चोट जो निशान आहे को सड़न जो निशान आहे उते उते डॉट डॉट जी साइड में लॻाईंदा ठीकु आहे डॉट डॉट करे लॻाईंदा तव्हां पंहिंजे पूरे फेस ते न लॻाइजो ऐं उन खां पोइ तव्हां लॻाए छॾे ॾियो ओके जी अगरि तव्हांजे चेहरे ते सफ़ा घणा एकनी आहिनि सफ़ा घणा प्रॉब्लम आहे त पोइ तव्हां टे मरतबा बि लॻाए सघो था लेकिन लॻाइण खां पहिरियों तव्हांखे फेस वॉश लाज़मी करणो आहे ऐं कुझु टाइम लॻाए तव्हां छॾे ॾियो ही पाण ई सही थी वेंदो तव्हांजी स्किन जे अंदरि जज़्ब थी वेंदो ऐं उन खां पोइ तव्हांखे महसूसु थींदो त भई हाणे असांखे रिमूव करणु घुरिजे सो तव्हां भले रिमूव करे सघो था पर तव्हां पहिरें मरतबा लॻाईंदा त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त बाबा वाकई प्रोडक्ट जेको आहे उन में कमाल जो असरु आहे ऐं तव्हांखे रिज़ल्ट जेके मिलंदा उहे तमामु घणा सुठा मिलंदा सो ही डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्नी ट्यूब आहे तव्हां ट्राए करे ॾिसजो तव्हांजे चेहरे जा एक्नी ख़तमु थी वेंदा ऐं तव्हांजी स्किन सफ़ा स्मूथ थी वेंदी क्लियर थी वेंदी ऐं सफ़ा VIP थी वेंदी सो तव्हां सभु जेके बि माण्हू असांखे ॿुधो पिया तव्हां वाइट एज जा तमामु ई प्रोडक्ट्स इस्तेमालु करे सघो था पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए सघो था ऐं न मिलनि था त पोइ तव्हांखे नंबर जेको ॿुधायां पई उन नंबर ते तव्हां राबितो लाज़मी कजो कॉल या फिर मैसेज करे तव्हां उन्हनि खे ॿुधाए सघो था त बाबा फलाणी जॻह ते तव्हांजा प्रोडक्ट कोन आहिनि अवेलेबल त हू जीअं अवेलेबल कराए सघनि

जी हर तरफ मौसम लश लगी पई आहे जितां किथां जेको बि अचे थो चए थो बाबा मौसम लश आहे मौसम लश आहे अॼु मां बि चवंदमि लाड़काणे में बि मौसम लश आहे मींहं अञा ताईं कोन वसियो आहे पर लॻे थो आसार आहिनि वसण जा बिल्कुल सी बिल्कुल बरसाती गाना तव्हांखे ॿुधाईंदासीं पर जेको टॉपिक पुछो हुन जो तव्हां जवाब ॾियो हुन खां अलावा किशोर भाई मारे साथ के टॉपिक आउं 5 सालनि खां पंहिंजे घर जो बॉस आहियां मूंखे वॾो अच्छा मूंखां वॾो मुंहिंजो भाउ आहे पोइ बाबा वॾो आहे पर घर जूं सभु ज़िमेदारियूं मुंहिंजे कुल्हनि ते आहे हा भाई जेके ज़िमेदारियूं हूंदियूं आहिनि ज़िमेदारियुनि खणण वारा जेके माण्हू हूंदा आहिनि उहे न ॾिसंदा आहिनि त तव्हां वॾा आहियो तव्हां नंढा आहियो बसि अलाह साईं तव्हांखे हिमत ॾींदो हिन खां अलावा चओ था शिकायत ही आहे 3-4 ॾींहनि खां लास्ट लिंक में मुंहिंजा कॉमेंट आउं फील नथो कयां शाम जो पाण घुराए कॉमेंट रीड नथो करे इहो थोरो प्रॉब्लम हले पियो 3-4 ॾींहनि खां जेका तव्हां शिकायत कई आहे बिल्कुलु या मुंहिंजी बि थोरी थोरी शिकायत आहे 3-4 ॾींहनि खां जेका असांजी फेसबुक वारी पोस्ट आहे न उहा मतिलबु 5:30 खां पोइ जेको आहे न थोरी डिस्कनेक्ट थी वञे शायदि कोई कॉपीराइट लॻी वञे थो या कोई मसलो आहे कॉपीराइट लॻी त कहिड़े टाइम बि लॻे न पर ही पूरे एक्ज़ेक्ट 5:30 जेके थियंदा न त हुन टाइम ते पोस्ट जेका उहा गुल थी वञे सो इन वजह सां तव्हांजा कॉमेंट मूं ताईं पहुचनि कोन था ऐं तव्हांजो जेको थोरो आहे न सिस्टम उहो थोरो हेॾे होॾे थी वञे थो सो हिन में मुंहिंजो को ग़लती कोन्हे को आई एम मासूम माण्हू सो या थोरो मसलो हिन खे हल करण जी कोशिशि कंदासीं मां ॾिसां थी अदा सां ॻाल्हाए अलाए छा प्रॉब्लम आहे फेसबुक में शायदि को इशू आहे इन चीज के ठीक कयूं था बाबा ये वाकई सही गाल कोने का और मुमताज कहते हैं अगर मुझे एक दिन के लिए घर का सरबराह बनाया जाए तो मेरा बुनियादी मकसद घर के निजाम को आसान खुशगवार और मुनज्जम बनाना होगा ओके ओके वेरी नाइस अच्छा आदल आपने जो लिखा है सदरा आपको पता है शाम वाले शो की पोस्ट क्यों बंद हो जाती है ये चीज थोड़ी समझ नहीं आई लेकिन इसकी जो सही मतलब जड़े ना वो मैं तलाश करूंगी पता नहीं क्या मसला है और जाम तालिब सोलंगी हमारे साथ है मोरो खां तमाशा जो प्रोग्राम बुधो पया जाम भा कहते हैं हाज़िर हाज़िर शमन जो गानो तव्हांखे लाज़मी ॿुधाईंदासीं शमन जो ॾाढो सुहिणो गानो असां ॿुधंदासीं सो थैंक यू सो मच तव्हां सां गॾु आहियो और किशोर भाई किथे एॾा रोज़ 8-10 मिंट बिल्कुल तव्हां सही था चओ जेको लास्ट आहे न असांजे प्रोग्राम जो थोरो डिस्टर्ब थी वञे थो इहो तव्हां सां मसलो न इहो सभिनी सां मसलो आहे तव्हांजा मैसेज थी सघे थो कॉमेंट ईंदा हुजनि पर हिते पोस्ट जेका न सफ़ा बंदि थी वञे त मूंखे पोइ कुझु मिले ई कोन थो सो इन खे ठीकु कयूं था तव्हां परेशान थियो और मोहम्मद समान कहते हैं टॉपिक मुझे घर का बॉस बनाया गया तो हर एक को

आपके सपने कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, ये पूरे होंगे इंशाल्लाह, बस आप जरा कोशिश करते रहे। दर्दी दिल हमें ज्वाइन कर चुकी है। वालेकुम अस्सलाम चंदा जानी, आप कैसी हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, आ गई जी, बिल्कुल मैं आ गई, देखो। और ये हमारे साथ हैं जनाब, हाँ जी, अली मुर्तजा कहते हैं सलाम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। कहते हैं रिमझिम सावन बरस रहा है विद कूल कूल एयर, मौसम लशा, नवाब शाह जी शो लिसनिंग विद जमशेद अंसारी। ओके, दोनों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। मौसम को एंजॉय करें भाई, आपको एक अच्छा सा गाना सुनाते हैं। अच्छा, आशिक खास के लिए हमारे साथ हैं फ्रॉम नवाब शाह, कहते हैं आरजे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। तो जी जी, आपको भी वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है, थैंक यू। हाय अल्लाह,

पोस्ट को लाइक और शेयर करें और मुझे बताएं अगर आप लोगों को 24 घंटे के लिए घर का बॉस बना दिया जाए तो आप अपने घर में क्या तब्दीलियां लाना पसंद करेंगे। और ये हमारे साथ हैप्पी कहती हैं, आज अगर मुझे घर का बॉस बनाया गया तो मैं घर का कुछ भी चेंज नहीं करूंगी क्योंकि मेरा घर जैसा है वैसे ही बहुत अच्छा है। वैसे अक्सर मेरी अम्मी जो है ना वो घर की चेंजिंग करती रहती है। मेरी अम्मी ही घर का बॉस रहे तो अच्छा है, मुझे तो अभी बॉस नहीं बना। आप समझ गई ना जाना यू टॉपिक आंसर? यस यस मैं समझ गई। और उसके अलावा आदिल कहते हैं, जवाब देता हूँ, अगर मुझे 24 घंटे के लिए घर का बॉस बना दिया जाए तो मेरे फैसले ये होंगे। डिसिप्लिन वाला दिन, सुबह सब 8 बजे उठेंगे, नाश्ता एक साथ करेंगे, मोबाइल नाश्ते के दौरान बंद होगा। ये जबरदस्त था। और कहते हैं फैमिली टाइम लाजमी होना चाहिए। वाकई दोपहर के बाद 2 घंटे सब मोबाइल छोड़कर लूडो या कोई गेम खेलेंगे। सफाई मुहिम, पूरे घर की बड़ी सफाई, हर कमरे का एक इंचार्ज काम के बदले शाम आइसक्रीम पार्टी दी जाएगी और बजट का फैसला भी होगा। कोई फजूल खर्ची नहीं, जो पैसे बचेंगे उससे महीने की आखिर में सबके लिए सरप्राइज प्लान होगा। वो वैसे पैसे बचेंगे लगता नहीं महीने की आखिर में पैसे नहीं बचते हैं, कितना ही ट्राई कर ले। और कहते हैं इज्जत वाला कानून होगा, 24 घंटे कोई किसी पर चीखेगा नहीं, अगर गुस्सा आए तो 10 मिनट गिनती अच्छा 10 मिनट गिनती करेंगे। अच्छा और सबसे आखिर में रात को सब छत पर बैठकर चाय प्लस पकोड़े और गपशप मोबाइल दूर। और कहते 24 घंटे हंसी मोहब्बत और थोड़ा डिसिप्लिन भी होगा। अगर वाकई हम जो ऐसे हम जेंजी जो लोग हैं ना वो वाकई ऐसा एक माहौल चाहते हैं कि घर का भी अच्छा सा माहौल होना चाहिए, फैमिली टाइम होना चाहिए और आपस में घर के जो अफराद है वो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें कि भाई एक इंसान क्या चाह रहा है। लेकिन आजकल मुझे ये लगता है कि मोबाइल ने जितना आपके घर में जितने आपके लोग हैं ना यानी कि जितने भी तमाजा घर भाती आए उन्हें की तमाम काम परे करे छो आज जी इनके मोबाइल के तैयार करने जो मकसद हो तो मानू एक बे से कनेक्ट रहन तमाम के जोड़े रखे पर जेतरो मोबाइल अची वो है तो ओतरा ही मानू एक बे का परे थी वाया। ऑनलाइन जो वर्ल्ड है वो वधंदो वने थो पर जो ऑफलाइन दुनिया है वह खुटंदी वने थी। जी अजकल असाजे घर जा भाती आन अस उन मिलन उन्होंने सा वेहण उन्होंने सा गपशप कर यो लगे तो थोड़ो साइड ही करे छो सो वाकई यहाँ सुठी गाल ना है। असा के इन चीज के बेहतर बनाने घुर्ज कोशिश तो जरूरी है बाकी उन्होंने रिजल्ट मिले तो इनकी टेंशन न कर तो वाई टी जा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर वाई टी जा प्रोडक्ट अगर तुम एरिया में ना मिले तो नंबर तक बुधा उन राबो जरूर कर। अच्छा दर्दित दिल कहती है कि कल कौन वसी बारिश न कल कौन वसी राजे टाइम थे आई थिंक 3 बजे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश थी हुई पर रुको हल्की हल्की सफा हल्की। अजय मे बी वसे अब्दुल गफार केसर भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम आप हमें सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया। अनवर भाई कहते हैं दी प्रोग्राम हाँ बिल्कुल भा प्रोग्राम लाइव आहे। अली मुर्तजा कहते हैं टॉपिक बॉस बनना आसान नहीं बस बात खत्म आग का दरिया है और डूब के जाना है ये ना

जी सब खां सोणी ते तव्हां तॾहिं थींदा सब खां सोणा तॾहिं थींदा जॾहिं तव्हां वाइट एज जा प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदा आहियो वाइट एज जे प्रोडक्ट्स में तव्हांजे लाइ तरह तरह जा प्रोडक्ट मौजूदु आहिनि इहो तव्हांजे लाइ एक्सक्यूज बिल्कुल बि न आहे त बाबा असां हीउ फलाणो प्रोडक्ट लॻाईंदा आहियूं त वाइट एज में कोन्हे को तव्हांजे लाइ हर तरह जो प्रोडक्ट वाइट एज में मौजूदु आहे चाहे उहा नाइट क्रीम हुजे चाहे उहा फेयरनेस क्रीम हुजे चाहे उहो एक्नी ट्यूब हुजे चाहे उहो सोप हुजे चाहे उहो फेस वॉश ई छो न हुजे त हर हिकु प्रोडक्ट तव्हांखे मिली रहियो आहे तव्हां लाज़मी पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते वञो उतां नालो वठी करे बाबा परचेज़ कयो ऐं इस्तेमालु करणु स्टार्ट कयो ऐं वाइट एज जी लवली क्रीम आहे जेका तव्हां बिल्कुलु इस्तेमालु करे सघो था हीउ मुंहिंजो फेवरेट प्रोडक्ट अथव वाइट एज लवली क्रीम सो हिनखे तव्हां इस्तेमालु कयो हर माण्हू जे लाइ जेको न हर माण्हू जी बेसिक नीड हूंदी आहे सो फेयरनेस क्रीम तव्हां वटि हुजणु लाज़मी आहे ऐं फेयरनेस क्रीम वरी एतिरी सुठी जेका वाइट एज वारनि ठाही आहे जंहिंजे अंदरि वाइटमिन्स मौजूदु आहिनि ऐं हिन खां अलावा सनस्क्रीम एड थियल आहे हे दुनिया में पहिरियों मरतबो ईअं थियो आहे त फेयरनेस क्रीम जे अंदरि तव्हांखे सनस्क्रीम बि मिली रही आहे त बाबा हिन मां फ़ाइदो हासिल कयो तव्हांखे ख़ूबसूरती मिलंदी तव्हांजी ख़ूबसूरती जी हिफ़ाज़त बि थींदी रहंदी सो वाइट एज लवली क्रीम आहे रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन्स जो फार्मूलो आहे 30 वाइटमिन्स जा कैप्सूल अथसि ऐं सनस्क्रीम बि एड अथसि वाह साईं वाह इस्तेमालु कयो जीअं तव्हां काई बि फेयरनेस क्रीम लॻाईंदा तव्हांजे घर जा बच्चा बि लॻाए सघनि था कुराड़ा बि लॻाए सघनि था हर कोई लॻाए बाबा सो तव्हां लाज़मी वाइट एज लवली क्रीम ट्राए करे ॾिसो

क्रेजी प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप इस्तेमाल करते रहिए अपने खूबसूरती में इजाफा लाते रहिए और इसी के साथ से टाइम हुआ जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

आप उन 24 घंटों में क्या अपने घर के अंदर चीजें जो है वो तब्दील करेंगे, क्या तब्दीलियां लाएंगे, क्या चेंजिंग करवाएंगे, ये आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे के साथ साथ अगर आप हमें सुन रहे हैं तो 888 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं। पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो मोहब्बतों को बढ़ाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। और इसी के साथ साथ अगर आप भी आईटीश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर करते जाइए। वैसे भी कहती हूँ ना कि शेयरिंग इज कैरिंग होती है, तो जल्दी जल्दी से आप बहुत सारी चीजें जो कि आप शेयर करेंगे। साथ साथ अगर आप किसी अपने प्यारे को खूबसूरत देखना चाहते हैं, प्यारे की खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, तो आपने उन्हें भी जनाब व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को गिफ्ट कर सकते हैं, तो तोहफा दीजिए, इससे भी मोहब्बतें बढ़ती हैं। और उसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए, वैसे पहले हमने आप लोगों को व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो अभी आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे।

ओके जी, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताया जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अब लोगों के स्किन के मुताबिक ही तैयार की गई है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई जान ये मेडिकेटेड फार्मूला है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर इसे तैयार किया गया है। और सबसे बेहतरीन और सबसे मजे की बात कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, और जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है ना, वो लोग तो लाजमी लगाइए। ऐसा भी सीन हो जाता है जब आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है ना, तब आपको कोई भी क्रीम सूट नहीं करती है। और कोई भी क्रीम जब सूट नहीं करती है तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा अपसेट हो जाती हैं। आप कहते हैं कि भाई हम ही आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारी स्किन ऐसी क्यों है। तो आप अगर परेशान हो चुके हैं, अपनी स्किन को ठीक करना चाहते हैं, अपनी स्किन पर ये जो तमाम नुकसान हो चुके हैं आपके चेहरे के, उनको जरा ठीक करना चाहते हैं, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को बाकायदा तौर पर निखार सकते हैं और खूबसूरती का ख्याल भी रख सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताती चलूं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, सेंसिटिव लोग भी लगा सकते हैं, मेडिकेटेड फार्मूला है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार इस तरह किया गया है कि इसके अंदर आपको मिलेंगे जनाब विटामिन ई बीड्स, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन, अल्फा आर्बुटीन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, ये तमाम चीजें एड की गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर इसे और ज्यादा परफेक्ट और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप लोग जब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे ना, तो पर्सनली बता रही हूँ भाईपी वाली सलाह यहाँ थी, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के हण खां पोई तव्हां खे अहसास थींदो त वाकई तव्हां केॾा सुठा प्रोडक्ट लॻाए रहिया आहियो। तव्हां बेशक इलाही सारा प्रोडक्ट ट्राई कया हूंदा, पर जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा त उन जो हिकिड़ो वाइब ई कमाल जो हूंदो। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी जिल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है, एक बहुत ही मयारी ब्यूटी क्रीम है। ये आपकी जिल्द को नमी फराहम करती है, चेहरे को नरम मुलायम बना देती है, तो वो ताजा भी रखती है। और उसके अलावा बाकायदा अगर आप इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो आपकी जिल्द की बेरोनगी कम हो जाती है और चेहरा आपका ज्यादा साफ, रोशन और दिलकश दिखाई देता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन की हिफाजत करती है और आपकी स्किन को और ज्यादा नेचुरल जो है ना वो दिखने में मदद देती है। तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिएगा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, दो दिनों के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो साथ में डी स्किन फेस वॉश भी लीजिएगा। और डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, और हाइलोरोनिक एसिड सीरम का जो काम होता है वो ये होता है कि आपकी स्किन के लिए ना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और ये इसका असर जो होगा ना आपकी स्किन के ऊपर ये होगा कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है, आपकी स्किन डीपली क्लीन रहती है, और आपकी स्किन जो है ना वो हमेशा हाइड्रेट रहती है। तो जिन लोगों को पानी मतलब कम पीने की आदत होती ना, वो बहुत थोड़ा पानी अपने डेली पूरे दिन में पीते हैं, तो उन लोगों के चेहरे की स्किन आप तो इसे मुरझाई सी लगेगी, बेरोनक सी लगेगी। तो अगर आप डी स्किन फेस वॉश का यूज करते हैं, डी स्किन फेस वॉश लगाते हैं, तो आपके चेहरे पर जो ये हाइड्रेशन की कमी होती है ना वो भी पूरी हो जाएगी, तो आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेट रहेगी और आप हमेशा ग्लो करते रहेंगे और आप महसूस करेंगे कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल करें। क्योंकि ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, दोनों की जो क्वालिटी है वो बहुत प्रीमियम है, बहुत ही मुनासिब से पैसों में भी आपको मिल रहे हैं। तो लाजमी ट्राई करके देखिएगा, और अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो मेरी जान उसके लिए आपने डायल करना है 03-12-50-25-907 और दूसरा नंबर है 03-27-38-43-09। ये नंबर आप डायल कीजिए आपकी आसानी के लिए ही है, ताकि आप बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाएं और वहां से नाम लेकर तलब करें। सो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन तमाम तरह प्रोडक्ट्स को आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए, अपनी खूबसूरती में इजाफा लाइए, क्योंकि अगर ये आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक मरतबा अगर आपकी खूबसूरती जरा डिम पड़ गई, नम पड़ गई, खत्म हो गई, तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल काम बन जाता है। तो अभी आपके पास टाइम है, ट्राई कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश।

ओके जी, बहुत ही प्यारा सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हो, इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो। आप लोगों के मैसेजेस की जाने भा जाते हैं, बड़ी बेसब्री से आप मुझे लग रहा है इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार मजीद नहीं करवाएंगे। ओके जी, किशोर भाई कहते कि शो जल्दी खत्म कर आऊं सी व्यू ते वणा, रात खां रिमझिम हले पई, मौसम डाढो लश आए, अज बाहर गानो भी हले पयो, बरसात है लगने लगा है डर, आए हाय हाजिर हाजिर 3 बजे मां खत्म करदे प्रोग्राम पुता हल्या वंजो।

ओके जी अनवर भाई कहते हैं असल में प्रोग्राम हीअंर ॿुधण शुरू कयो आहे प्यारो मौसम एंजॉय कयूं पिया टॉपिक न्यूज खां पोइ ॿुधायो चलो ठीकु आहे मां बिल्कुलु टॉपिक हाणे तव्हांखे ॿुधायो तव्हां ॿुधी वरितो हूंदो ऐं पोस्ट खे लाइक शेयर कयो जिन अञा ताईं कोन कयो आहे दातला तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया अच्छा उन खां अलावा कहते हैं सिदरा कराची में बारिश हो रही है अल्लाह ॿुधायो दर्दे दिल कहती है मौसम बहुत अच्छा है मीरपुर खास का ठंडी ठंडी हवा चल रही है बारिश और क्यूट जाने का शो एंजॉय कर रहे हैं थैंक यू अच्छा फहद अली हमारे साथ ही हाय बाजी क्या हाल है बाजी आज भी हमारे पास बारिश चल रही है माशूक रिंद ताल को शहदादपुर ओके जी भाई को वेलकम कहते हैं एंजॉय करे मौसम और कहते हेलो अदि आज मैं लेट हो गया आपका प्रोग्राम खत्म होने वाला है मुझे लेट हो गई बाजी अब आप बताओ क्या हाल है आपके आपके पास बारिश चल रही है या नहीं नहीं बारिश वाला थोड़ा थोड़ा मौसम है बारिश हुई नहीं अभी तक क्या पता हो जाए अनवर भाई कहते हैं टॉपिक आंसर अब्बा से बजट कैप्चर सुबह उठते ही अब्बा से घर की तिजोरी की चाबी और वॉलेट का चार्ज ले के कहेंगे आज के दिन फाइनेंस मिनिस्टर मेरे पास है अच्छा फाइनेंस मिनिस्ट्री मेरे पास है सही सही एक दिन की बादशाह एंजॉय कर ले

0: अच्छा मुमताज कहते हैं तेरे नाम को लेकर अक्सर मिटाया है हमने सिदरा, तुझे दिल के जख्मों में छुपाया है हमने। वक्त बदल गया मगर वो नाम ना बदल सका, तेरा ख्याल आज भी दिल से ना निकल सका। सॉन्ग सुना दो शमन मिराली, शमन ईंदो बाबा शमन ऑन द वे। तमाम थोड़ो सबर करे वेठो, इन खां अलावा तमाम पोस्ट के लाइक और शेयर कयो। जाम तालिब सोलंगी हमारे साथ हैं और जाम सोलंगी भाई क्या कहते हैं। अच्छा मोरो का तमाशा की बुधो पया शमन सुगानो सब बुधना छा बला जो। चलो मां शमन सुगानो ताके लाजमी बुधराइनम तापाने सीट ते वेरो। आई ता पोस्ट के लाइक और शेयर करना। हेलो बात कहते हैं यदी हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। ओके ओके जी आपको वेलकम कहा जाता है। सनोला फुलपोटो हमारे साथ मौजूद है। हेलो मामा समान आपको भी खुश
1: आमदी।
0: अच्छा हैप्पी कहती आरजी मेरी सिस्टर और मेरी कजिन ने आपसे कॉल पे बात करी थी, उनका नाम है सोनिया और महरू महरूनिसा, आपको याद है। ऐसे तो बहुत सारी लड़कियों ने बात करी है तो हाँ याद ही होगा, और उनको भी वेलकम कहते हैं। और ये हमारे साथ है गुलाम फरीद बलोच, कहते हैं कैसे करें इंसान की जात पर भरोसा। गुलाम फरीद मैयत पे रोने वाले भी गरम बिरयानी मांगते हैं। सही बात है वैसे। अच्छा निदड़ी आ चुकी है। हेलो क्यूटी वेलकम टू शो। मैं भी आ गई भागती भागती, छो भला गाड़ी वही हुई है।

ओके प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। टॉपिक आज मैंने आप लोगों से पूछा है कि आप मुझे बताइए अगर आप लोगों को 24 घंटे के लिए आपके घर का बॉस बना दिया जाए तो 24 घंटों में आप अपने घर की क्या चेंजिंग करेंगे, क्या तब्दीलियां लाएंगे। और पोस्ट को लाइक और शेयर करके बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और उसके अलावा बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं।

0: ओके जी निदड़ी क्या कहती है, नेट ठीक नहीं मौसम की वजह से इसलिए शो में लेट आ गई। चलें कोई बात नहीं। अनवर भाई कहते हैं बारिश का मौसम और पोइट्री, चलें बारिश वाला गाना लगा के उस गाने के साथ इस पोइट्री को पढ़ेंगे। हजार भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। हजार भाई कहते हैं सिस्टर हम भी आपके साथ साथ हैं, गुड शो, थैंक यू प्यारे भाई। और लिखते हैं आपका शो सुनते सुनते नींद आ गई थी मुझे, फिर आंख खुली खुद ब खुद सो गए थे।
1: बादल भर जी यार बसन कन रिम झिम सितारा।
0: ओके जी एम आर सिंधी हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैंने पहली बार मैसेज किया है, गुड शो, थैंक यू एम आर सिंधी। हाँ जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ही जाने। अच्छा ऐसे कहते लाड़काने घोट की जी मौसम सागी आ है सेम टू सेम ये किया।

0: ये FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद, मा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड रंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर, राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 03013803847।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

ओके जनाब, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, अगर आप भी इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल जी इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, हर तरह के प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि भाई अगर आप ये सोचें कि इनके अंदर केमिकल एड किए गए होंगे या लगाने के बाद हमारी स्किन खराब होगी, तो ऐसा भी कोई सी नहीं है। आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट हो, इतने जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, जबरदस्त हैं। लगाएंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि आए हाय मजे आ गए। ओके जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं खूबसूरती में इजाफे के लिए, और मर्द हजरात खवातीन हर कोई लगाएंगे, तो लगाइए और खूबसूरती को जरा बढ़ाते रहिए। यहाँ पर अनवर भाई लिखते हैं, अच्छा पोइट्री लिखी है, लिखते हैं कि कोई सुरमई सा बादल, कोई भीगता सा मंजर, तेरी याद का इशारा, ये बरसात का महीना, जुदाई के दिनों में जब भी बारिश गुनगुनाती है, तेरी बातें तेरी यादें बहुत बेसाख्ता आती हैं। ओके जी, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त।

अच्छा निधि कहती है टॉपिक सबसे पहले घर की साफ सफाई करवाऊंगी और सब अपनी अपनी जगह पर ना सामान रखवाऊंगी और थोड़ा सा हुक्म भी चलाऊंगी. बस सही ना नंदड़ी सोच वाली गाय. वडा वडा कम कराए बाबा बदला वट सबनी इनका. फहाद अली हमारे सारे फहाद अली थैंक यू सो मच आपने इतने सारे कमेंट कर दिए हैं. ऐसे कहते हैं गानो हलाए ना बरसात जी मौसम एंजॉय करन दे तुम्हारे चवण का पेड़ लिस्ट में लगाए छड़े हो चाह याद करना. अच्छा हैप्पी कहती है आज कॉल क्यों नहीं लेती मैंने सोचा था ये आज ही मैं सोच रही थी कि कॉल्स नहीं ली काफी दिनों से तो कल हम कॉल्स लेने वाले हैं. और नखा अलावा जी दीदार अली बिरोही कहती है आज का मौसम ऐसा है सिदरा जो पहुंच गया घर वो सिकंदर जो ना पहुंचा वो नाले के अंदर. सही सही ओके. अच्छा अली मुर्तजा कहते हैं दिलावर एंड कदीर देरो भी आपका शो सुन रहे हैं थैंक यू दोनों को वेलकम करते हैं इनफैक्ट तीनों को. अच्छा उन खां अलावा किशोर भाई कहती अना कितनी देर लगंदी तां के वणणो आ त वणनी के चलो सी. अच्छा हां लास्ट में मां सुरिया सुमरो जो गानो रखियो थी मां ना फोजिया सुमरो लाकड़ी जे का तां के वणंदी आ दर्द गम खां भी. अच्छा सो वरियाम अली जतोई हमारे साथ कहते हैं हम भी आपका शो सुन रहे हैं आपका शो प्यारा शो आज सॉन्ग सुनाए बिल्कुल सी आपका गाना हमने एंजॉय किया थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं. एसके हमारे साथ है एसके कहते हैं मानिक अबड़ो सफदर अबड़ो और माही मोहम्मद खान स्टार दिलशरी और पता नहीं आगे क्या क्या है थोड़ा मैसेज जो है ना आपका समझने में मुझे थोड़ी मुश्किल पेश आई है. सो आप सब भाइयों को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं. बताइए जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करी या अभी सिर्फ आप बस सोच रहे हैं कि हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के फायदे कितने सारे हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है यानी कि इसे डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है. बहुत ही जबरदस्त बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं ट्राई करके देखिए आप निराश नहीं होंगे.

अच्छा पैनल ते केजो ना मुके खाली मैसेज मिलियो आए सो अगर नपड़ा ता समझी वंजो यो मोजो मैसेज होयो सही आ जामिन अली ब्रो हमारे साथ लाड़काना से आप हमारा शो सुन रहे आपको भी वेलकम कहते हैं मकसूद मल्ला मेहरापुर से कहते हाय हेलो सिद्रा मुस्कान डी स्किन क्रीम डी स्किन क्रीम असान जो छोकरियों चरियों करे छडियों आए और जी हमें गाना सुनाना मास्टर मंजूर का गाना नहीं चलाए वो इस गाने के बाद चलेगा सो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल जगह हणन पया वही चरिया थी अथव माना खूबसूरती से पोया मताऊ वाले चरिया समझो अच्छा रियाज महर हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं भाई को ओके जी राशिद अली खास के लिए हमारे साथ है फ्रॉम मेहरापुर के थे सलाम अलैकुम जी वालेकुम अस्सलाम ओके जी फजीला सिंधी हमारे साथ है वालेकुम अस्सलाम कहते हैं हैप्पी संडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान आप कैसी हैं मां सफा सोनी ता बुधायो की आयो कहते सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट लड़कियों को टॉपिक कहती है बहुत तब्दीलियां लाती घर वाले सुन रहे वरना बताती जाना बताओ थोड़ा तो बताओ और जी ठीक है आपने अच्छा किया

ओके जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी हे यो बिचो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तुम पान ना लगा सको तो तुम पे प्यारे के तोहफो दियो बाबा, गिफ्ट कयो। गिफ्ट देण से मोहब्बत वधंदी आए, बुधो तो वनी तो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट कर सको था। डी स्किन जो फेस वॉश भी तुम्हें मिली रो है, बई चीजों सान दींदा तो आहा वाह वाह थी वेंदी।

चलें जी इंजॉय करें। एक और गाना हमारी लिस्ट में है तो हम जरा साथ साथ वो गाना भी सुनेंगे, और ये गाना होगा जी मास्टर मंजूर की आवाज में। बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं और मुझे बताते जा रहे हैं कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम ही सुना व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

अच्छा, दीदार अली बिरोई कहते हैं कि तीनों मौसम का मुकाबला चल रहा है, गर्मी जा नहीं रही, सर्दी आ नहीं रही और बारिश बीच में डांगड़ा रही है। बात तो सही है। अच्छा एम आर सिंधी आपको वेलकम कहती हैं, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं। दर्द दिल कहती हैं टॉपिक, पहले तो कोई मुझे बॉस नहीं बनाएगा, मेरी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं और मेरे को जमींदार बनना भी नहीं। अच्छा जिम्मेदार बनना भी नहीं, मेरे को लगा जमींदार कहाँ से आ गया। कहती दोनों बातें हैं, हमारे घर की बॉस अम्मी ही ठीक है। वैसे ये बात है, वो अम्मी के जो टाइटल है ना ये बॉस वाला, वो उन्हीं को जचता है बस, हमारे बस की ये बात ही नहीं।

अच्छा किशोर भाई कहते हैं मुंजो गानो शो खां पो हलाए जाम पर साथ हे लगने लगा है डर ठीक प्रोग्राम खत्म करे पो बुधी वठंदस मां सही और कहते तोखे छड़े किए वन्या सोच अली एडियो गालियों कंदा नी मारे छड़ीदा आयो अच्छा अनवर भाई कहते हैं प्रोग्राम खत्म थिए त दादू मोरो पुलते विंदासी मौसम डाढो प्यारो आ एंजॉय कजे वरी यानसी हाँ बिल्कुल सही था चो वंजो वंजो बाबा एंजॉय कयो

0: क्या बात है, लास्ट में हमारे पास फोजिया सुमरो की आवाज में एक बहुत ही सुंदर सा गाना है, तो मैं सोच रही थी कि ये वाला गाना भी सुन लेते हैं। बिल्कुल जी, प्रोग्राम में हमने ये गाना लास्ट ट्रैक लगा लिया है, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब, प्रोग्राम सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और साथ साथ व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, आप लोगों की स्किन के मुताबिक ही तैयार किए गए हैं। और ये तमाम प्रोडक्ट्स यानी कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, ये आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुके हैं। अगर अवेलेबल नहीं भी हुए तो उसके लिए आपको नंबर बताया जाता है प्रोग्राम के अंदर, जो कि आप डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। तो जरूर से अवेलेबल कराया करें और इस्तेमाल किया करें ताकि आपकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे।
1: नंगर पर कर शेर सलानो।
0: ओके जी, अब्दुल गफार भाई हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, थैंक यू। और फहद भाई थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ, इतने ही आपके कमेंट पढ़े तो सही, और क्या करूं। हजार भाई कहते हैं सिस्टर कल आपने मेरा सॉन्ग प्ले किया बंडल ऑफ थैंक्स, मुझे लगा था आपने नहीं सुना होगा। थैंक यू सो मच, ये आपकी मोहब्बतें कसमें दिल जीत लेती हैं। अनवर भाई कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट कंदासी, बिल्कुल बाबा प्यारन के गिफ्ट कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ऐसन कहते हैं जो टाइम गुजरे ही न तो सच में। ओके जी, मोहम्मद बचल शंबानी भाई हमारे साथ, थैंक यू सो मच प्यारे भाई। दर्दे दिल कहती हैं हम तो बारिश से तंग हो गए हैं, कल 5 से 6 तक, दोपहर 7 से 10 तक प्रोग्राम तो वट गया है, बस हो गई हमारे। हाँ, मैंने भी सुना मीरपुर खास में बहुत बारिश हुई है। ओके जी, मोहम्मद जमान भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंजॉय करें। निदली कहती रात को पूरा शो सुनोगी, नेट का इशू है आपके यहाँ, चलें ठीक है जी, सुनिएगा तसल्ली से। अच्छा अच्छा, तो चो अज रश घटा डिसी मायूस न थीजा, बरसात कम लाई छो, न लाइट आ न नेटवर्क आ, बिल्कुल मैं न गाल के समझी चुकी आया। चलो इन गाने की तो मैं एंजॉय कर, गाने से अगर तुम मोकल बैठू था वरी चलो तुम्हारा मुलाकात है, मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में सो पंज ओ ही दूसरो ख्याल रखना, कितने का गलती थी, मुझे तो माजरत कहूँ था कि जो गानो रेजी वो मैसेज रेजी वा, तो माजरत बाबा मोकलानी ना है। सलामत, सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल।

ॿिए मरहले में साख बहाल थिए हा। इलेक्शन कमीशन घटि में घटि ॿिए मरहले में शफ़ाफ़ियत यकीनी बणाए, जिते धांधली थी उते चूंडनि जी ॿीहर मुतालबे जो हक़ महफ़ूज़ रखूं था।

लाश किरंदा रहन या हालतू खराब थन मुस्लिम लीग नून इक्तदार खातिर कुछ भी करे सके थी असो एक कारकुन शहीद कर पीपल्स पार्टी अगवाण कमर जमान कायरा की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कमर जमान कायरा चयो तो वक्ती सदर आजाद कश्मीर पंज तक में वो तो उन हमलो वो हैरत है रियासत जो सदर भी महफूज ना इलेक्शन कमीशन के पैं खदशन बाबत केतरा ही भेरा आगाह कर नून लीग के भी धार बुधा है इलेक्शन कमीशन सूरत हाल ऐसा बावजूद निंड सुतल है आजाद कश्मीर में अल्ट्राफार्म 47 वाली चूंडू नजर पयू अचन पीपल्स पार्टी इन चूंडन के फ्री एंड फेयर थी चई सके पीपी अगवाण नदीम अफजल चंद है तो जिते पीपल्स पार्टी मजबूत है तो उते सिर्फ दुख्याई पैदा क्यों पी वन इन वक्त इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर जो किरदार शकी है एक पार्टी के इक्तदार डराए पे वे पीपल्स पार्टी जो एले बटरी ते दांधली जो इल्जाम पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर जे इलेक्शन सेल जे इंचार्ज इल्जाम लगायो ते एले बटरी में पोलिंग स्टेशन 24 ते नून लीग जा कारकुन बैलेट पेपर्स ते ठप्पा लगाए रहा आहन पीपल्स पार्टी अगवाण शेरी रहमान चयो आहे ते इलेक्शन अमले जी देर सबब वोटर्स परेशान आहन केतरन ही पोलिंग स्टेशन ते पोलिंग अमल देर जो शिकार आहे खास तौर एले 25, 28, 31, 34 जो केतरियों ही पोलिंग स्टेशन देर जो शिकार आहन असास करार दिनल औरतुन जे पोलिंग स्टेशन ते सिर्फ एक पुलिस अहलकार मुकर थियल आहे चूंडू पुरअमन तरीके से जारी आहन रुवण पिटण वाली पार्टी जो वजूद किथे न पियो मिले दांधली जा इल्जाम मरण वारा बीहर रणियों कंदा रहंदा पंजाब जी सुध समा वाले वजीर उज़्मा बुखारी चयो आहे त कश्मीरी पंहिंजे बेहतर मुस्तक़बिल लाइ बाहर निकरन चूंड मुहिम दौरान अवाम में मुस्लिम लीग के पज़ीराई मिली है खिदमत जी मैदान में नून लीग जो मुकाबलो केर भी नथो करे सके आजाद कश्मीर में नून लीग जी हुकूमत चाहंदी सुध समा वाले फाकी वजीर अतातार जो बयान अतातार चयो तो आजाद कश्मीर में वनो तो अवां के नवाज शरीफ और शाहबाज शरीफ जा तरक्याती मनसूबा नजर इंदा सियासत करण हर सियासी जमात जो हक है मुस्लिम लीग नून तामीर ए तरक्की की सियासत कंदी है आजाद कश्मीर में चूंडन के बे मरले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के नव मुहाजरन के 12 सीटन ते पोलिंग जो अमल जारी पोलिंग जो अमल शाम 5 वगे ते बिना कें वक्फे के जारी रहंदो मुजफ्फराबाद डिवीजन के टिन जिलन मुजफ्फराबाद नीलम ए जेहलम वेली के नवन तकन ते 8,90,621 वोटर पंजी वोट जो आइनी हक इस्तेमाल कर रहा आहन नव तकन ते पीपल्स पार्टी नवाज लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ए बेन सियासी पार्टियन जा 208 उम्मीदवार मैदान में लथल एले 27 ते मुजफ्फराबाद ते पोलिंग मुलतवी मौसम की सूरत हाल ए लैंड स्लाइडिंग सबब पोलिंग जो सामान न पहुंची सको

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: देखिए फरार।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: हलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: लाश किरंदा रहनि या हालतूं ख़राब थियनि। मुस्लिम लीग नून इक़्तदार ख़ातिर कुझु बि करे सघे थी। असांजो हिकु कारकुन शहीद कयो वियो। पीपुल्स पार्टी अॻवान कमर ज़मान कायरा जी मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमर ज़मान कायरा चयो त वक़्ती सदर आज़ाद कश्मीर पंहिंजे तक में वियो त हुन ते हमिलो कयो वियो। हैरत आहे त रियासत जो सदर बि महफ़ूज़ न आहे। इलेक्शन कमीशन खे पंहिंजे ख़दशनि बाबति केतिरा ई भेरा आगाह कयो। नून लीग खे बि ॿुधायो। इलेक्शन कमीशन सूरतहाल ॾिसण बावजूदु निंड सुतल आहे। आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फार्म 47 वारियूं चूंडियूं नज़र पियूं अचनि। पीपुल्स पार्टी हिन चूंडनि खे फ्री एंड फेयर नथी चई सघे। पीपी अॻवान नदीम अफ़ज़ल चंद चयो आहे त जिते पीपुल्स पार्टी मज़बूत आहे त सिर्फ़ उते ई ॾुखियायूं पैदा कयूं पियूं वञनि। हिन वक़्तु इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर जो किरदारु शकी आहे। हिकु पार्टीअ खे इक़्तदारु ॾिरायो पियो वञे। पीपुल्स पार्टीअ जो एल ए 32 ते धांधली जो इल्ज़ाम। पीपुल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर जी इलेक्शन सेल जे इंचार्ज इल्ज़ाम लॻायो त एल ए 32 में पोलिंग स्टेशन 24 ते नून लीग जा कारकुन बैलेट पेपर्स ते ठपा लॻाए रहिया आहिनि। पीपुल्स पार्टी अॻवान शेरी रहमान चयो आहे त इलेक्शन अमले जी देर सबब वोटर्स परेशान आहिनि। केतिरनि ई पोलिंग स्टेशन ते पोलिंग अमल देर जो शिकार आहे। ख़ासि तौर ते एल ए 25, 28, 31 ऐं 34 जूं केतिरियूं ई पोलिंग स्टेशन देर जो शिकार आहिनि। हसास करार ॾिनल औरतुनि जे पोलिंग स्टेशन ते सिर्फ़ हिकु पुलिस अहलकार मुक़ररु थियल आहे। चूंडूं पुरअमन तरीक़े सां जारी आहिनि। रुअण पिटण वारी पार्टीअ जो वजूद किथे न पियो मिले। धांधली जा इल्ज़ाम मरण वारा ॿीहर रणियूं कंदा रहंदा। पंजाब जे सुध समा वारे वज़ीर उज़्मा बुख़ारी चयो आहे त कश्मीरी पंहिंजे बहितर मुस्तक़बिल लाइ ॿाहिरि निकरनि। आज़ाद कश्मीर में त पीपुल्स पार्टीअ जी हुकूमत आहे। धांधली कीअं थी? इल्ज़ाम तराशी करण बदिरां आवाम खां पुछो त वोट छो न ॾिनो। ख़िदमत जे मैदान में नून लीग
1: Your face now speaks 10 languages. Your dog can do podcasting.
0: अतातार चयो त आज़ाद कश्मीर में वञो, तव्हांखे नवाज़ शरीफ़ ऐं शहबाज़ शरीफ़ जा तरक़ियाती मनसूबा नज़र ईंदा। सियासत करणु हर सियासी जमात जो हक़ आहे। मुस्लिम लीग नून तामीर ऐं तरक़ीअ जी सियासत कंदी आहे। आज़ाद कश्मीर में चूंडुनि जे ॿिए मरहले में मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न जे 9 ऐं महाजरनि जे 12 सीटनि ते पोलिंग जो अमल जारी। पोलिंग जो अमल शाम 5 वॻे ते बिना कंहिं वक़फ़े जे जारी रहंदो। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न जे 3 ज़िलनि मुज़फ़्फ़राबाद, नीलम ऐं जहलम वैली जे 9 तकनि ते 8,90,621 वोट जो आइनी हक़ इस्तेमालु कंदा। 9 तकनि ते पीपुल्स पार्टी, नवाज़ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऐं ॿियनि सियासी पार्टियुनि जा उमेदवार मैदान में लथल। एल ए 27 ते मुज़फ़्फ़राबाद ते पोलिंग मुलतवी। मौसम जी सूरतहाल ऐं लैंड स्लाइडिंग सबबु पोलिंग जो सामान न पहुची सघियो। मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में तरसियल कश्मीरी बि वोट जो हक़ इस्तेमालु करे रहिया आहिनि। कराची में 19 पोलिंग स्टेशन्स क़ाइमु। 4200 वोटर्स पंहिंजे वोट जो हक़ इस्तेमालु कंदा। हैदराबाद में 51 कश्मीरी वोट जो हक़ इस्तेमालु कंदा। खैरपुर ज़िले में 3 पोलिंग स्टेशन क़ाइमु। 65 वोटर वोट जो हक़ इस्तेमालु कंदा। डेरकी में 7, लाड़काणे में 2, टंडे अलियार में 71, सांगड़ में 6, प्रयालो में 7, गंबट में 11 वोट रजिस्टर थियल। कुंडी ऐं नवाबशाह में बि पोलिंग स्टेशन्स क़ाइमु।

0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान ते हमला रोकण जो ऐलान। अमरीकी सदर चयो त अमरीका ईरान ते अहिड़ा हमला करण लाइ तैयार आहे जेके आलमी जंग खां पोइ न ॾिठा विया आहिनि। ईरान ऐं खिते जे ॿियनि मुल्कनि हमला रद्द करण जी दरख़्वास्त कई आहे। हमला रोकण फौरी मुआदे सां मशरूत आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहिक वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

पीपल्स पार्टी जो एल ए बटी ते धांधली जो इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन सेल जे इंचार्ज इल्ज़ाम लगायो त एल ए बटी में पोलिंग स्टेशन 24 ते नून लीग जा कारकुन बैलेट पेपर्स ते ठप्पा लगाए रहा आहिनि। पीपल्स पार्टी कुमार शेजरीमान चयो आहे त इलेक्शन अमले जी देर सबब वोटर्स परेशान आहिनि, केतिरनि ई पोलिंग स्टेशन ते पोलिंग अमल देर जो शिकार आहे। ख़ासि तौर एल ए 25, 28, 31 ऐं 34 जूं केतिरियूं पोलिंग स्टेशन देर जो शिकार आहिनि। हसास करार ॾिनल औरतुनि जी पोलिंग स्टेशन ते सिर्फ़ हिकु पुलिस अहलकार मुक़ररु थियल आहे। चूंडूं पुरअमन तरीक़े सां जारी आहिनि। रोअण पिटण वारी पार्टी जो वजूद किथे न पियो मिले। धांधली जा इल्ज़ाम भरण वारा ॿीहर रड़ियूं कंदा रहंदा। पंजाब जे सुध समाव वारी वज़ीर उस्मा बुखारी चयो आहे त कश्मीरी पंहिंजे बहितर मुस्तक़बिल लाइ ॿाहिरि निकिरनि। चूंड मुहिम दौरान अवाम में मुस्लिम लीग खे पज़ीराई मिली।

0: आज़ाद कश्मीर में चूंडनि जे ॿिए मरहले में मुज़फ़्फ़राबाद डिवीजन जी नव ऐं माजरनि जी 12 सीटनि ते पोलिंग जो अमल जारी। पोलिंग जो अमल शाम 5 वॻे ताईं बिना वक़्फ़े जे जारी रहंदो। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीजन जे टे ज़िलनि मुज़फ़्फ़राबाद, नीलम ऐं जहलम वेली जे नव तकनि ते 8,90,621 वोटर वोट जो आइनी हक़ इस्तेमालु कंदा। नव तकनि ते पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऐं ॿियनि सियासी ऐं आज़ाद उमेदवारनि समेत 208 उमेदवार मैदान में लथल। ढिले 27 ते मुज़फ़्फ़राबाद ते पोलिंग मुलतवी। मौसम जी सूरतहाल ऐं लैंड स्लाइडिंग सबबि पोलिंग जो सामान न पहुची सघियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 ऐं 02424601000।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0303 5592120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: मुज़फ़्फ़राबाद डिवीजन के नव ए माजरन की 12 सीटों पर पोलिंग जो वक्त खत्म। वोटर की गड़प जो अमल जारी। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीजन के टे जिलन मुज़फ़्फ़राबाद नीलम ए जलम वैली के नव तकन से 8,90,621 वोटर वोट जो आइनी हक इस्तेमाल कदा। नव तकन से पीपल्स पार्टी, नवाज लीग इस्तेकाम, पाकिस्तान पार्टी ए बेन सियासी आजाद उम्मीदवार समेत 208 उम्मीदवार मैदान में लथल। एलए 27 से मुज़फ़्फ़राबाद से पोलिंग मुलतवी। मौसम की सूरत हाल लैंड स्लाइडिंग सबब पोलिंग जो सामान न पहुंची सको।

PPMNA सलाउद्दीन जोड़े जो थे आजाद कश्मीर में मुबैना हमलो गोली लगन सबब जख्मी पीपल्स पार्टी वधराई में जाना आया था मुस्लिम लीग नून जे कारकुन सलाउद्दीन जोड़े जो थे सिद्धी फायरिंग कई सलाउद्दीन जोड़े जो के इलाज लाए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर

आशिक किरदारनि या हालतूं ख़राब थियनि। मुस्लिम लीग नून इक़्तदार ख़ातिर कुझु बि करे सघे थी। असांजो हिकु कारकुन शहीद कयो वियो। पीपल्स पार्टी अॻवान कमर ज़मान कायरा जी मुज़फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमर ज़मान कायरा चयो आहे त वक़्ती सदर आज़ाद कश्मीर पंहिंजे तक में वियो त उन ते हमिलो कयो वियो। हैरत आहे त रियासत जो सदर बि महफ़ूज़ नाहे। इलेक्शन कमीशन खे पंहिंजे ख़दशनि बाबति केतिरा ई भेरा आगाह कयो। नून लीग खे बि ॿुधायो इलेक्शन कमीशन सूरत ॾिसण बावजूदु निंड सुतल आहे।

आजाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वारियों चूंडू नजर पई अचन। पीपल्स पार्टी इन चूंडन के फ्री एंड फेयर नथी चई सके। पीपी अगवान नदीम अफसल चंद चयो आहे त जिते पीपल्स पार्टी मजबूत आहे त सिर्फ उते ही डुखियाईं पैदा कयूं पई वञनि। हिन वक़्त इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर जो किरदार वशूक आहे, हिकु पार्टी खे इक़्तदार ॾियारियो पियो वञे।

चूंडू पुरअमन तरीके सां जारी आहिनि। रोअण पिटण वारी पार्टी जो वजूद किथे न पियो मिले। धांधली जा इल्ज़ाम हणण वारा ॿीहर रड़ियूं कंदा रहंदा। पंजाब जी सुध समाव वारी वज़ीर उस्मा बुखारी चयो आहे त कश्मीरी पंहिंजे बहितर मुस्तक़बिल लाइ ॿाहिरि निकिरनि। चूंड मुहिम दौरान अवाम में मुस्लिम लीग खे पजिराई मिली।

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
0: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-3385-69

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक।
2: आजाद कश्मीर के वक्त सदर PPMNA ते हमलो, पीपी कारकुन मुश्ताक शाह कतल, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जी मुसम्मत। आजाद कश्मीर के वक्त सदर चौधरी लतीफ अकबर PPMNA ते सलाउद्दीन जोड़े जो ते हमलो थियो, बिलावल भुट्टो जरदारी पारा LA 31 में कतल थियल मुश्ताक शाह के वारिसन सा ताज़ियत जो इज़हार। लाल भुट्टो सरदारी चव पहरियों रियासत के सदर चौधरी लतीफ अकबर ते हमलो पीपी कारकुन की शहादत से नून लीग की नीयत वाज़ह थी वही है। PPMNA सलाउद्दीन के बाह में गोली हणी जख्मी कर पो, गोली ए ताकत से नून लीग आजाद कश्मीर की अवाम के हकन ते धाड़ो हणी रही है। नून लीग जो धांधली जरिए खटड़ अवाम मां रियासत ता वीसा खत्म कर छींद। नून लीग चूंडू नती कटी सके तो साजिशन ते लही आई है।

बिलावल साहब पढ़िया लिखिया आयो अवां के घणो वक्त वञणो आहे गुमराह न थियो वज़ीर आज़म जे सियासी सलाहकार राणा सनावला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस राणा सनावला चयो त मुश्ताक अहमद बीपी जो कारकुन न हो सदर चौधरी लतीफ़ अकबर सां ज़ाती मामले सबब मामूली झेड़ो थियो सलाउद्दीन सिंध पुलिस जा अहलकार साण करे पुलिंग स्टेशन जे अंदर घिड़ियो हो लाश किरंदा रहन या हालतूं ख़राब थियनि मुस्लिम लीग नून इक़्तदार ख़ातिर कुझु बि करे सघे थी असांजो हिकु कारकुन शहीद कयो वियो पीपल्स पार्टी अॻवान कमर ज़मान कायरा जी मुज़फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कमर ज़मान कायरा चयो आहे त वक़्ती सदर आज़ाद कश्मीर पंहिंजे तक में वियो त हुन ते हमिलो कयो वियो हैरत आहे त रियासत जो सदर बि महफ़ूज़ न आहे इलेक्शन कमीशन सूरत हाल ॾिसण बावजूदु निड सुतल आहे नदीम अफ़ज़ल चंद चयो त आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वारियूं चूंडू नज़र पियूं अचनि पीपल्स पार्टी हिन चूंडनि खे फ्री एंड फेयर नथी चई सघे जिते पीपल्स पार्टी मज़बूत आहे त सिर्फ़ उते ई ॾुखियाऊं पैदा कयूं पियूं वञनि नैयर बुख़ारी चयो त नून लीग ज़ुल्म ऐं डाट ज़रिए चूंडू कटणु चाहे थी अहिड़ियूं चूंडू क़बूल न आहिनि आज़ाद कश्मीर में त पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे धांधली कीअं थी इल्ज़ाम लॻाइण बदिरां अवाम खां पुछो त वोट छो न ॾिनो वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मुक़ाम चयो आहे त हुननि खे ब्लेम गेम सां कुझु हासिलु न थींदो पंजाब जे सुध समा वारी वज़ीर उस्मा बुख़ारी चयो आहे त रोअण पिटण वारी पार्टी जो वजूद किथे न पियो मिले धांधली जा इल्ज़ाम वरण वारा ॿीहर रड़ियूं कंदा रहंदा सुध समा वारी वफ़ाक़ी वज़ीर अताउल्ला ताड़ चयो त धांधली जा सबूत आहिनि त खणी अचो ख़िदमत जे मैदान में नून लीग जो मुक़ाबिलो केर बि नथो करे सघे ख़्वाजा आसिफ़ चयो त आज़ाद कश्मीर में नून लीग जी हुकूमत थियण वञे पई वॾे वज़ीर सैद महद अली शाह जी सदारत हेठि बरसाती सूरताल खे मुंहुं ॾियण बाबति इजलास वॾे वज़ीर डिप्टी कमिश्नर्स पी डी एम ऐं मकानी इंतज़ामिया ऐं ज़िले इंतज़ामिया खे अलर्ट रहण जी हिदायत कई वॾे वज़ीर खे ब्रीफिंग ॾिनी वई त सिंध में बरसातनि सबबि 8 ॼणा फोत ऐं 8 ज़ख़्मी थिया हैदराबाद ऐं मीरपुर ख़ासि डिवीज़न में ईंदड़ ॾींहं दौरान 20 खां 60 मिलीमीटर वधीक बरसातनि जो इम्कानु आहे वॾे वज़ीर पारां उमरकोट जे गैर हाज़िर टाउन ऑफिसर्स खे फौरी तौर मुअतल करण जो हुकुम आहे।

0: कराची में प्रिया कुमारी ए बेन बारन की पास अपील है सिंध हाईकोर्ट का मार्च। प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी के सद से सुहणी पारस आमिर नवाज वड़ाइच ए बेन की अगुवाणी में मार्च। पुलिस कंटेनर लगाए प्रेस क्लब के रस्तों बंद कर छो। अगुवाणन प्रिया कुमारी समेत गुम थे बारन के बाजियाब कराया वे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान ते हमला रोकण जो ऐलान। अमरीकी सदर चयो ता अमरीका ईरान ते अड़ा हमला रोकण लाए तैयार आहे जेके आलमी जंग का पोए न डिठा विया हन। ईरान ए खत्ते जे बेन मुल्कन हमला रद्द करण जी दरख्वास्त कई आहे। हमला रोकण फौरी मुआहिदे सां मशरूत आहे। मुआहिदे में अपना हरमुस के फौरी ए मुकमल तौर खोलण ऐं ईरान जे एटमी प्रोग्राम जो खात्मो शामिल हूंदो। इसराइल भी ईरान ते हमला रोकण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। अमरीका या इसराइल की जारियत को भरपूर जवाब दिनों वो। ईरानी परदेही वजीर जो सऊदी ए तुर्क परदेही वजीर से फोन से राबतो। अब्बास अराग़ची अमरीकी जारियत में इलाके जहां मुल्क शामिल थे उन्होंने भी सख्त रद्द अमल दींदी। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर से भी फोन से गाल बोल कई है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के मुशीर है ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर से हमला किया पा तो असर जंग के मैदान का बाहर तींदा। मगरबी ताकत पारा 2500 साल में टायल ग्लोबल आर्डर तबाह कर वो। खानपुर भरसा जतोई बिरादरी की पिंथुरियन में जेड़ो एक जनो मारजी वो। कच्चे के गोठ सारूकोश में जतोई बिरादरी की पिंथुरियन में जेड़ो थो। फायरिंग सबब नौजवान कांडेरो जतोई मारजी वो। मकतूल नौजवान के वारिसन जवाबदार भाव के बेगुनाह कत्ल कर 60 ठगियों भी काहे व्या जवाबदार गिरफ्तार कर इंसाफ कर वे। नंगर पार्कर में हद दखलियों जाना घर ठाने खिलाफ कूली बिरादरी के मानों जो धरनो। घोट सूराचंद के रवासियन रेवेन्यू ए पुलिस इंतजामिया खिलाफ धरनो हो।
1: Your face now speaks 10 languages. Your dog can do podcast intros. Your meme page finally has a voice. With Avatar 4, turn any image, cartoon, anime, pet, whatever, into a talking head that actually lip syncs. No deep fakes, no uncanny valley, just audio synced magic. Content creation just leveled up. Upload, type, share. Avatar 4 is live. Go play.
0: احتجاجی مظاہرہ کمبر میں آئی پی اے ٹیسٹ پاس جی ایس ٹی ای پی ایس ٹی امیدوارن مظاہرہ کیا۔ پنواکل میں ٹیسٹ پاس امیدوارن پریس کلب اگیا احتجاجی مظاہرہ کرے نعرے بازی کئی۔ گڑی خیرو میں 5 کھاں 15 گریڈ والے نوکرین لائے ٹیسٹ ڈیندڑ امیدوارن احتجاج کیا۔ امیدوارن جو چوڑ ہے تو دیر سبب اسان جو مستقبل داؤ تے لگل ہے۔ عمر کی حد بھی ختم تھی پی ونے۔ ٹیسٹ پاس کرنے باوجود آفر
2: खबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 हैं तोकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320 1800003

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85-69।
1: अस्सलाम वालेकुम। अदा
2: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

सिंध राउंडअप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। सिंध में रोज़ 500 माण्हू फालिज जो शिकार, ज़िंदगियूं बचाइण जे लाइ जामिया स्ट्रोक सेंटर न हुजण जो इंकशाफ़। सिंध सरकार पारां जलालपुर केनाल ऐं पाणी मामिलो, CCIME उथारण जो फ़ैसिलो, इजलास घुराइण जो मुतालबो। गुड्डूबाद सखर बैराज वटि बि विचोले दर्जे जी ॿोॾि, तरबेला डैम भरिजण जी गुंजाइश 13 फुट रहिजी वई। कणक जो हिकु ॿियो वॾो स्कैंडल, 8 आफ़ीसरनि जूं नौकिरियूं ख़तमु, 5 अरब वापसि करण जो हुकुम। सिंध में कलम 144 में महीनो वाध, मुज़ाहिरनि ऐं बेल सवारीअ ते पाबंदी। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, सिंध में बलदियाती ख़िदमतूं, ज़िमेवारी रुगो हुकूमत जी न शहरनि जी बि। खातून अवल ऐं क़ौमी असेंबली जी मेंबर बीबी आसफा भुटो ज़रदारी खे जन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में तजवीज़ कयल जामिया स्ट्रोक सेंटर जे क़याम बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। ब्रीफिंग दौरान डॉक्टर फज़ल ज़ैदी सिंध में फालिज जे वधंदड़ ॿार बाबति आगाह कंदे ॿुधायो त 5,50,00,000 खां वधीक आबादीअ वारे सूबे में रोज़ानो लॻभॻि 500 माण्हू फालिज जो शिकार थियनि था, जिन मां तक़रीबन 50 मरीज़ शदीद नोयत जे फालिज में मुबतला थियनि था ऐं खेनि इंतिहाई ख़ासि तिबी सहूलियतुनि जी ज़रूरत हूंदी आहे। वक़्तसर ऐं ज़िंदगियूं बचाईंदड़ इलाज जी फराहमी लाइ अवामी सिहत वारे निज़ाम ऐं जामिया स्ट्रोक सेंटर जो क़याम इंतिहाई ज़रूरी आहे। ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त जेतोणीकि NICVD ऐं SICVD इस्केमिक स्ट्रोक जे मरीज़नि खे अहम तिबी सहूलियतूं फराहम करे रहिया आहिनि, पर सिंध में अञा ताईं अहिड़ो जामिया स्ट्रोक सेंटर मौजूदु नाहे जेको फालिज जे समूरनि क़िस्मनि, पेचीदा एसाबी ऐं शिरयानी हंगामी हालतुनि, जदीद न्यूरो इंट्रोवेंशनल इलाज, न्यूरो क्रिटिकल केयर ऐं बहालीअ जूं ख़ासि सहूलियतूं फराहम करे सघे। डॉक्टर फज़ल ज़ैदी ॿुधायो त हीउ मनसूबो पाकिस्तान स्ट्रोक इनिशिएटिव ज़रिए अॻिते वधायो पियो वञे, जेको अमरीका में क़ाइमु हिकु गैर मुनाफ़े बख़्श इदारो आहे ऐं पाकिस्तान में फालिज जे इलाज खे हथी ॾियण लाइ कमु करे रहियो आहे। मरीज़नि जे मदद वारी फाउंडेशन GPMC ऐं हुकूमत सिंध जे सहकार सां सिंध जो पहिरियों सरकारी शोबे जो जामिया स्ट्रोक सेंटर क़ाइमु कयो वेंदो, जिते जदीद इलाज, माहिरनि जी तरबियत, तहक़ीक़ ऐं सॼे सूबे जे लाइ टेली स्ट्रोक नेटवर्क जे मर्कज़ तौरु ख़िदमतूं फराहम कयूं वेंदियूं। बीबी आसफा भुटो ज़रदारी पाकिस्तान स्ट्रोक इनिशिएटिव मरीज़नि जी मदद वारे फाउंडेशन ऐं GPMC जी गॾियल कोशिशुनि खे साराहियो। हुन ख़ासि स्ट्रोक सहूलियतुनि खे मज़बूत करण जी अहमियत ते ज़ोर ॾींदे चयो त अहिड़ा क़दम खणणु ज़रूरी आहिनि जेकी रोकथाम वारे मौत ऐं उमिरि भर जी माज़ूरीअ खे घटाइण में मददगार साबित थियनि। ज़रात खाते जे सूबाई वज़ीर सरदार मोहम्मद बख्श ख़ान महर हैदराबाद जे शहबाज़ बिल्डिंग में एग्रीकल्चर आफ़िस में रखियल मिली कचहरीअ खे पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सिंधु हुकूमत नंढनि आबादगारनि खे वधीक मज़बूत बनाइण ऐं ज़रई शोबे खे हथी वठाइण लाइ सिंध एग्रीकल्चर कैलकुलेटिव एक्ट आणे रही आहे। हिन एक्ट खे हतमी शिकिल ॾियण जे लाइ वज़ीर आला सिंध पारां मुंहिंजी सरबराही में कमेटी जोड़ी वई आहे। हिन एक्ट जे मसौदे खे हतमी शिकिल ॾियण लाइ आबादगारनि सां मुशावरत करणु अॼु पहिरीं हैदराबाद में खुली कचहरी आहे। सिंध एग्रीकल्चर कैलिकटोज एक्ट 2026 बाबति सिंध जे ॿियनि शहरनि में इदारनि सां खुली कचहरी करे संदन राय वरिती वेंदी। कैलकुलेटिव एक्ट सां नंढनि आबादगारनि खे वधीक ख़ुदमुख़्तियारी ॾिनी वेंदी। हिन तसवुर में 8 एकड़ ज़मीन रखंदड़ आबादगारनि जा ग्रुप ठाहिया वेंदा। सरकार पारां सहूलियतूं ऐं मरातूं सिधी रीत उन्हनि आबादगार ग्रुपनि खे मिलंदियूं। आबादगारनि जा फसल ऐं ॿई उपत वठण जे अख़्तियार कैलकुलेटर्स वटि हूंदो। सूबाई वज़ीर जे डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आफ़िस मुनक़िद थियल कचहरीअ में आबादगार अॻवाण नबी बख़्श सठियो, महमूद नवाज़ शाह ऐं ॿियनि आबादगार अॻवाणनि शिरकत कई। जलालपुर केनाल मामले ते सिंध हुकूमत पारां गॾियल मुफ़ादनि वारे काउंसिल जो इजलास घुराइण जो मुतालबो। वफ़ाक़ खे ख़त लिखण जो फ़ैसिलो, वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां वज़ीर आज़म खे ख़त लिखण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि त ड्रिघे अरसे खां गॾियल मुफ़ादनि वारे काउंसिल CCI जो इजलास न थियण सबबि सिंध सरकार जा पाणी मुआदे ते अमल न थियण वारा ख़दशा अञा ताईं बरक़रार आहिनि, जॾहिं त जलालपुर केनाल ते बि सिंध हुकूमत पारां वफ़ाक़ अॻियां एहतजाज करण ते ग़ौर शुरू कयो वियो आहे। मिलियल ॼाण मूजिबि त सिंध सरकार पारां गॾियल
मुफादन वारी काउंसिल जो इजलास घुराइण जे लाइ वज़ीर आज़म खे ख़त लिखण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। वाज़े रहे त आइनी तौर ते हर टिन महीननि में CCI इजलास घुराइणो हुजे थो, पर वफ़ाक़ी सरकार पारां 2.5 सालनि खां इजलास न सॾायो वियो आहे। उन हवाले सां ज़रियुनि जो चवणु आहे त जलालपुर केनाल मामले ऐं सिंध खे हिसे जो पाणी न मिलण वारे मामले ते सिंध सरकार पारां आइनी फोरम CCI में आवाज़ उथारण जे लाइ गॾियल मुफ़ादनि वारी काउंसिल जो इजलास घुराइण जे लाइ वफ़ाक़ खे ख़त लिखण ते गौर शुरू कयो वियो आहे। गुडू बैराज खां पोइ सखर बैराज वटि बि विचोले दर्जे जी ॿोॾि थी वई। तरबेला डैम भरिजण जी गुंजाइश 13 फुट रहिजी वई। काल्ह शाम जो सखर बैराज वटि पाणीअ जी सतह वधण बाद विचोली ॿोॾि डिक्लेयर कई वई आहे। काल्ह सखर बैराज जे मथां पासे पाणी वहुकरा 3,69,054 क्यूसिक रिकॉर्ड कया विया, जॾहिं त हेठां पासे 3,12,174 क्यूसिक रिकॉर्ड कया विया। जॾहिं त गुडू बैराज वटि विचोली ॿोॾि बरक़रार आहे ऐं अॼु पाणीअ में वधीक लाथ जा इम्कान आहिनि। गुडू बैराज वटि काल्ह मथां पासे 3,96,993 क्यूसिक ऐं हेठां पासे 3,56,938 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो आहे। गुडू ऐं सखर विच में पाणी कचे जे इलाइक़े में फहिलिजी वियो आहे, जॾहिं त सखर बैराज जे हेठां पासे बि पाणी कचे जे इलाइक़े में फहिलिजी वियो आहे। होॾां कोटड़ी बैराज ते पाणी वहुकरा वधी रहिया आहिनि। 84,788 ऐं हेठां पासे 41,083 क्यूसिक रिकॉर्ड कई वई। तोंसा ऐं पंजनद वटां वहकरा घटिजण बाद सिंध में बि वहकरा घटिजण जा इम्कान आहिनि। ॿिए पासे तरबेला डैम में पाणी सतह 1537 फुट ते पहुची वई आहे ऐं डैम में भरिजण जी गुंजाइश रुगो 13 फुट बची आहे। कालाबाग ऐं चश्मा बैराजनि वटि हेठां दर्जे जी ॿोॾि आहे। सिंध में 5 अरब रुपयनि खां वधीक कणक गबन करण जो इल्ज़ाम साबित थियण ते खोराक खाते जा 8 अमलदार नौकरियुनि तां बरतरफ़। शिकारपुर, दादू, सांगड़ ऐं खैरपुर ज़िलनि में कणक खुर्द बुर्द मामले जी इंक्वायरी में गबन साबित थियण बाद 8 अमलदारनि खे बरतरफ़ करण बाद 5,12 अरब वापसि कराइण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि त सिंध जे रुगो 4 ज़िलनि दादू, सांगड़, शिकारपुर ऐं खैरपुर ज़िलनि में 5,12,84 लख रुपियनि जी कणक खुर्द बुर्द में अमलदारनि ऐं आफ़िसर मुलविस हुजण जो हिकु ॿियो छिरकाईंदड़ स्कैंडल बि साम्हूं अची वियो आहे। जंहिं बाद खोराक खाते पारां ॼाणायल ज़िलनि जे अॻूणे DFC समेत 8 अमलदारनि खे नौकरियुनि तां बरतरफ़ कयो वियो आहे। उन हवाले सां खोराक खाते जे सूबाई वज़ीर मखदूम महबूब ज़मा जे हिदायत बाद खैरपुर ज़िले जे फूड इंस्पेक्टर ज़हीर शर ते 2,82,82 लख रुपए की कणक खुर्दबुर्द जो इल्ज़ाम साबित थियण बाद खेस नौकरी तां बरतरफ़ कयो वियो आहे। सांगड़ ज़िले जे फूड इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास मेमण ते 1,05,86 लख जी कणक गबन करण जे इल्ज़ाम साबित थियण बाद खेस नौकरीअ तां बरतरफ़ करे ॼाणायल रक़म वापसि करण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। जॾहिं त शिकारपुर जे फूड सुपरवाइज़र मोहम्मद मिठल मक्सीअ खे बरतरफ़ करे खेस कणक ग़ाइब करण ते 84,91,00,000 रुपया सरकारी ख़ज़ाने में वापसि करण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। दादूअ जे फूड सुपरवाइज़रनि इमरान मक्सी ऐं क़ुर्बान मक्सीअ खे बि नौकरियुनि तां बरतरफ़ कयो वियो आहे। अहिड़ी तरह अॻूणे DFC मुनवर आराई ऐं ग़ुलाम सवा मीराणी खे बि नौकरियुनि तां बरतरफ़ कयो वियो आहे। घरू वज़ीर ज़ियालत सलंजार समूरे सिंध सूबे अंदरि कलम 144 में 1 महीने जी वाध करे छॾी। कलम 144 में वाध जो नोटिफिकेशन बि जारी कयो वियो। नोटिफिकेशन मूजिबि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे 40 खे सूबाई सतह ते महफ़ूज़ ऐं पुरअमुन बनाइणो आहे। समूरे सूबे में वॉल चॉकिंग, एहतजाजी मुज़ाहिरनि, धरणनि ऐं रैलियुनि ते पाबंदी बरक़रार रहंदी। 1 अगस्त 2026 खां ईंदड़ 1 महीने ताईं कलम 144 तहत पाबंदियूं लागू रहंदियूं। घरू वज़ीर जो चवणु आहे त कलम 144 तहत हथियारनि जी नुमाइश ऐं मोटरसाइकिल जी वेल सवारीअ ते बि मुकमल पाबंदी हूंदी। अवामी हंधनि ते हथियारनि जी नुमाइश ऐं ख़ौफ़ हिरास पकड़ण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड खे ड्यूटीअ दौरान खुलेआम हथियारनि जी नुमाइश खां रोकियो वियो। हुकुमनामे में वधीक चयो वियो आहे त गाॾीअ में सफ़र दौरान बि सिक्योरिटी गार्ड जो असलो नुमाया न हुजणु घुरिजे। कलम 144 जी भञकड़ी कंदड़नि ख़िलाफ़ कानून मुताबिक़ सख़्तु कार्रवाई कई वेंदी। लाॻापियल थाणनि जे SHOs खे कलम 144 जी ख़िलाफ़ वर्ज़ीअ ते कलम 188 PPC तहत केस दाख़िल करण जो इख़्तियार हूंदो। घरू वज़ीर चयो त अमन अमान जो क़याम, कानून जी पालादस्ती ऐं शहरनि जे जान ऐं माल जे तहफ़ुज़ ते को बि समझौतो न कयो वेंदो।

पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जे शहरनि ऐं ॻोठनि में बलदियाती ख़िदमतूं अॼु बि आवाम जे अहम मसलनि मां हिकु आहिनि। पीअण जो साफ़ पाणीअ जी खोट, गंदगीअ जा ढेर, बंदि पियल नालियुनि, टुटल रस्तनि, स्ट्रीट लाइटुनि जी अणहूंद ऐं सफ़ाई जे नाक़स इंतज़ाम सबबि लखें शहरी रोज़ानो तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। बरसातुनि दौरान नेकाल जो निज़ाम कमज़ोर हुजण करे शहरनि में पाणी भीजी वञे थो, जंहिं मां आम दरफ़्त मुतासिर थिए थी ऐं मच्छरनि समेत मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे पखिड़जण जा ख़तरा वधी वञनि था। केतिरनि ई इलाइक़नि में किचरो वक़्त सर न खॼण सबबि माहौलियाती आलूदगी बि वधी रही आहे। बलदियाती इदारनि जी ज़िमेवारी आहे त हू बाक़ाइदा सफ़ाई, किचरे जो बर वक़्त नेकाल, साफ़ पाणीअ जी फ़राहमी, नालनि जी सफ़ाई, रस्तनि जी मरम्मत ऐं स्ट्रीट लाइट जी सार संभाल खे यकीनी बणाइनि। साॻे वक़्तु तरक़ियाती फंडनि जी शफ़ाफ़ इस्तेमालु ऐं अवामी शिकायतुनि जे फौरी अज़ाले ते बि ध्यानु ॾिनो वञे। पर सुधारो सिर्फ़ हुकूमत जी कोशिश सां मुमकिन नाहे, शहरनि जूं बि अहम ज़िमेवारियूं आहिनि। अवाम खे घुर्जे त कचरो रस्तनि ऐं नालियुनि में उछलाइण बदिरां मुक़रर हंधनि ते विझनि, सफ़ाई मुहिमुनि में भरपूर हिसो वठनि, पाणीअ जी गैर ज़रूरी ज़ाया थियण खां पासो कनि, सरकारी मिल्कियतुनि जी हिफ़ाज़त कनि ऐं कंहिं बि ख़राबी या मसइले बाबति लाॻापियल बलदियाती इदारनि खे बर वक़्तु आगाह कनि। सुधारनि जे लाइ कुझु अहम तजवीज़ूं आहिनि। हर शहर ऐं ॻोठ में बाक़ाइदा सफ़ाई जो शेड्यूल तयारु करे उन ते सख़्तीअ सां अमल करायो वञे। नाले जी सफ़ाई बरसातुनि खां अॻु मुकमल कई वञे। जदीद किचरो गॾु करणु ऐं नेकाल जो निज़ाम मुतारिफ़ करायो वञे। शहरनि लाइ शिकायतूं दाख़िल कराइण जो आसान ऑनलाइन ऐं हेल्पलाइन निज़ाम क़ाइमु कयो वञे। स्कूलनि, कॉलेजनि ऐं मीडिया ज़रिए सफ़ाई ऐं शहरी ज़िमेवारियुनि बाबति आगाही मुहिम हलाई वञे। बलदियाती इदारनि जी कारकर्दगी जी बाक़ाइदा निगरानी कई वञे ऐं गफ़लत कंदड़ अमले ख़िलाफ़ क़ानून मूजिबि कार्रवाई कई वञे। जेकॾहिं हुकूमत, बलदियाती इदारा ऐं शहरी गॾिजी पंहिंजूं ज़िमेवारियूं निभाइनि त सिंध जा शहर ऐं ॻोठ वधीक साफ़, सिहतमंद ऐं रहण लाइक़ु बणिजी सघनि था। साफ़ सुथरो माहौल सिर्फ़ हुकूमत जी ज़िमेवारी न पर हर शहरीअ जी गॾियल ज़िमेवारी आहे। ही हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।

0: जगह जा पावा ऐं पाइप डेढ ब चार छह नव ऐं ॿारह इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीजे, खेलों का

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियूं, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 ऐं 0242460100।

सिंध राउंडअप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। सिंध में रोज़ 500 माण्हू फालिज जो शिकार, ज़िंदगियूं बचाइण जे लाइ जामिया स्ट्रोक सेंटर न हुजण जो इंकशाफ़। सिंध सरकार पारां जलालपुर केनाल ऐं पाणी मामिलो, CCIME उथारण जो फ़ैसिलो, इजलास घुराइण जो मुतालबो। गुड्डूबाद सखर बैराज वटि बि विचोले दर्जे जी ॿोॾि, तरबेला डैम भरिजण जी गुंजाइश 13 फुट रहिजी वई। कणक जो हिकु ॿियो वॾो स्कैंडल, 8 आफ़ीसरनि जूं नौकिरियूं ख़तमु, 5 अरब वापसि करण जो हुकुम। सिंध में कलम 144 में महीनो वाध, मुज़ाहिरनि ऐं ॿेल सवारीअ ते पाबंदी। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, सिंध में बलदियाती ख़िदमतूं, ज़िमेवारी रुगो हुकूमत जी न शहरनि जी बि। खातून अवल ऐं क़ौमी असेंबली जी मेंबर बीबी आसफा भुट्टो ज़रदारी खे जन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में तजवीज़ कयल जामिया स्ट्रोक सेंटर जे क़याम बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। ब्रीफिंग दौरान डॉक्टर फज़ल ज़ैदी सिंध में फालिज जे वधंदड़ ॿार बाबति आगाह कंदे ॿुधायो त 5,50,00,000 खां वधीक आबादीअ वारे सूबे में रोज़ानो लॻभॻि 500 माण्हू फालिज जो शिकार थियनि था, जिन मां तक़रीबन 50 मरीज़ शदीद नोयत जे फालिज में मुबतला थियनि था ऐं खेनि इंतिहाई ख़ासि तिबी सहूलियतुनि जी ज़रूरत हूंदी आहे। वक़्तसर ऐं ज़िंदगियूं बचाईंदड़ इलाज जी फराहमी लाइ अवामी सिहत वारे निज़ाम ऐं जामिया स्ट्रोक सेंटर जो क़याम इंतिहाई ज़रूरी आहे। ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त जेतोणीक NICVD ऐं SICVD इस्केमिक स्ट्रोक जे मरीज़नि खे अहम तिबी सहूलियतूं फराहम करे रहिया आहिनि, पर सिंध में अञा ताईं अहिड़ो जामिया स्ट्रोक सेंटर मौजूदु नाहे जेको फालिज जे समूरनि क़िस्मनि, पेचीदा एसाबी ऐं शिरयानी हंगामी हालतुनि, जदीद न्यूरो इंट्रोवेंशनल इलाज, न्यूरो क्रिटिकल केयर ऐं बहालीअ जूं ख़ासि सहूलियतूं फराहम करे सघे। डॉक्टर फज़ल ज़ैदी ॿुधायो त हीउ मनसूबो पाकिस्तान स्ट्रोक इनिशिएटिव ज़रिए अॻिते वधायो पियो वञे, जेको अमरीका में क़ाइमु हिकु गैर मुनाफ़े बख़्श इदारो आहे ऐं पाकिस्तान में फालिज जे इलाज खे हथी ॾियण लाइ कमु करे रहियो आहे। मरीज़नि जे मदद वारी फाउंडेशन GPMC ऐं हुकूमत सिंध जे सहकार सां सिंध जो पहिरियों सरकारी शोबे जो जामिया स्ट्रोक सेंटर क़ाइमु कयो वेंदो, जिते जदीद इलाज, माहिरनि जी तरबियत, तहक़ीक़ ऐं सॼे सूबे जे लाइ टेली स्ट्रोक नेटवर्क जे मर्कज़ तौरु ख़िदमतूं फराहम कयूं वेंदियूं। बीबी आसफा भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान स्ट्रोक इनिशिएटिव मरीज़नि जी मदद वारे फाउंडेशन ऐं GPMC जी गॾियल कोशिशुनि खे साराहियो। हुन ख़ासि स्ट्रोक सहूलियतुनि खे मज़बूत करण जी अहमियत ते ज़ोर ॾींदे चयो त अहिड़ा क़दम खणणु ज़रूरी आहिनि जेकी रोकथाम वारे मौत ऐं उमिरि भर जी माज़ूरीअ खे घटाइण में मददगार साबित थियनि। ज़रात खाते जे सूबाई वज़ीर सरदार मोहम्मद बख्श ख़ान महर हैदराबाद जे शहबाज़ बिल्डिंग में एग्रीकल्चर आफ़िस में रखियल मिली कचहरीअ खे पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सिंधु हुकूमत नंढनि आबादगारनि खे वधीक मज़बूत बनाइण ऐं ज़रई शोबे खे हथी वठाइण लाइ सिंध एग्रीकल्चर कैलकुलेटिव एक्ट आणे रही आहे। हिन एक्ट खे हतमी शिकिल ॾियण जे लाइ वज़ीर आला सिंध पारां मुंहिंजी सरबराहमी कमेटी जोड़ी वई आहे। हिन एक्ट जे मसौदे खे हतमी शिकिल ॾियण लाइ आबादगारनि सां मुशावरत करणु अॼु पहिरीं हैदराबाद में खुली कचहरी आहे। सिंध एग्रीकल्चर कैलिकोटोज एक्ट 2026 बाबति सिंध जे ॿियनि शहरनि में इदारनि सां खुली कचहरी करे संदन राय वरिती वेंदी। कैलकुलेटिव एक्ट सां नंढनि आबादगारनि खे वधीक ख़ुदमुख़्तियारी ॾिनी वेंदी। हिन तसवुर में 8 एकड़ ज़मीन रखंदड़ आबादगारनि जा ग्रुप ठाहिया वेंदा। सरकार पारां सहूलियतूं ऐं मरातूं सिधी रीति उन्हनि आबादगार ग्रुपनि खे मिलंदियूं। आबादगारनि जा फसल ऐं ॿई उपत वठण जे अख़्तियार कैलकुलेटर्स वटि हूंदो। सूबाई वज़ीर जे डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आफ़िस मुनक़िद थियल कचहरीअ में आबादगार अॻवाण नबी बख़्श सठियो, महमूद नवाज़ शाह ऐं ॿियनि आबादगार अॻवाणनि शिरकत कई। जलालपुर केनाल मामले ते सिंध हुकूमत पारां गॾियल मुफ़ादनि वारे काउंसिल जो इजलास घुराइण जो मुतालबो। वफ़ाक़ खे ख़त लिखण जो फ़ैसिलो, वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां वज़ीर आज़म खे ख़त लिखण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि त ड्रिघे अरसे खां गॾियल मुफ़ादनि वारे काउंसिल CCI जो इजलास न थियण सबबि सिंध सरकार जा पाणी मुआदे ते अमल न थियण वारा ख़दशा अञा ताईं बरक़रार आहिनि, जॾहिं त जलालपुर केनाल ते बि सिंध हुकूमत पारां वफ़ाक़ अॻियां एहतजाज करण ते ग़ौर शुरू कयो वियो आहे। मिलियल ॼाण मूजिबि त सिंध सरकार पारां गॾियल
मुफ़ादनि वारी काउंसिल जो इजलास घुराइण जे लाइ वज़ीर आज़म खे ख़त लिखण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। वाज़े रहे त आइनी तौर ते हर टिन महीननि में CCI इजलास घुराइणो हुजे थो, पर वफ़ाक़ी सरकार पारां 2.5 सालनि खां इजलास न सॾायो वियो आहे। उन हवाले सां ज़रियुनि जो चवणु आहे त जलालपुर केनाल मामले ऐं सिंध खे हिसे जो पाणी न मिलण वारे मामले ते सिंध सरकार पारां आइनी फोरम CCI में आवाज़ उथारण जे लाइ गॾियल मुफ़ादनि वारी काउंसिल जो इजलास घुराइण जे लाइ वफ़ाक़ खे ख़त लिखण ते गौर शुरू कयो वियो आहे। गुडू बैराज खां पोइ सखर बैराज वटि बि विचोले दर्जे जी ॿोॾि थी वई। तरबेला डैम भरिजण जी गुंजाइश 13 फुट रहिजी वई। काल्ह शाम जो सखर बैराज वटि पाणीअ जी सतह वधण बाद विचोली ॿोॾि डिक्लेयर कई वई आहे। काल्ह सखर बैराज जे मथां पासे पाणी वहकरा 3,69,054 क्यूसिक रिकॉर्ड कया विया, जॾहिं त हेठां पासे 3,12,174 क्यूसिक रिकॉर्ड कया विया। जॾहिं त गुडू बैराज वटि विचोली ॿोॾि बरक़रार आहे ऐं अॼु पाणीअ में वधीक लात जा इम्कान आहिनि। गुडू बैराज वटि काल्ह मथां पासे 3,96,993 क्यूसिक ऐं हेठां पासे 3,56,938 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो आहे। गुडू ऐं सखर विच में पाणी कचे जे इलाइक़े में फहिलिजी वियो आहे, जॾहिं त सखर बैराज जे हेठां पासे बि पाणी कचे जे इलाइक़े में फहिलिजी वियो आहे। होॾां कोटड़ी बैराज ते पाणी वहकरा वधी रहिया आहिनि। 84,788 ऐं हेठां पासे 41,083 क्यूसिक रिकॉर्ड कई वई। तोंसा ऐं पंजनद वटां वहकरा घटिजण बाद सिंध में बि वहकरा घटिजण जा इम्कान आहिनि। ॿिए पासे तरबेला डैम में पाणी सतह 1537 फुट ते पहुची वई आहे ऐं डैम में भरिजण जी गुंजाइश रुगो 13 फुट बची आहे। कालाबाग ऐं चश्मा बैराजनि वटि हेठां दर्जे जी ॿोॾि आहे। सिंध में 5 अरब रुपयनि खां वधीक कणक गबन करण जो इल्ज़ाम साबित थियण ते खोराक खाते जा 8 अमलदार नौकरियुनि तां बरतरफ़। शिकारपुर, दादू, सांगड़ ऐं खैरपुर ज़िलनि में कणक खुर्द बुर्द मामले जी इंक्वायरी में गबन साबित थियण बाद 8 अमलदारनि खे बरतरफ़ करण बाद 5 अरब 12 करोड़ रुपया वापसि कराइण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। उन हवाले सां मिलियल ॼाण मूजिबि त सिंध जे रुगो 4 ज़िलनि दादू, सांगड़, शिकारपुर ऐं खैरपुर ज़िलनि में 5 अरब 12 करोड़ 84 लख रुपियनि जी कणक खुर्द बुर्द में अमलदारनि ऐं आफ़िसर मुलविस हुजण जो हिकु ॿियो छिरकाईंदड़ स्कैंडल बि साम्हूं अची वियो आहे। जंहिं बाद खोराक खाते पारां ॼाणायल ज़िलनि जे अॻूणे DFC समेत 8 अमलदारनि खे नौकरियुनि तां बरतरफ़ कयो वियो आहे। उन हवाले सां खोराक खाते जे सूबाई वज़ीर मखदूम महबूब ज़मा जे हिदायत बाद खैरपुर ज़िले जे फूड इंस्पेक्टर ज़हीर शर ते 2,82,82 लख रुपए की कणक खुर्दबुर्द जो इल्ज़ाम साबित थियण बाद खेस नौकरी तां बरतरफ़ कयो वियो आहे। सांगड़ ज़िले जे फूड इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास मेमण ते 1,05,86 लख जी कणक गबन करण जे इल्ज़ाम साबित थियण बाद खेस नौकरीअ तां बरतरफ़ करे ॼाणायल रक़म वापसि करण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। जॾहिं त शिकारपुर जे फूड सुपरवाइज़र मोहम्मद मिठल मक्सीअ खे बरतरफ़ करे खेस कणक ग़ाइब करण ते 84,91,00,000 रुपया सरकारी खज़ाने में वापसि करण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। दादूअ जे फूड सुपरवाइज़रनि इमरान मक्सी ऐं क़ुर्बान मक्सीअ खे बि नौकरियुनि तां बरतरफ़ कयो वियो आहे। अहिड़ी तरह अॻूणे DFC मुनवर आराई ऐं ग़ुलाम मुस्तफ़ा मीराणी खे बि नौकरियुनि तां बरतरफ़ कयो वियो आहे। घरू वज़ीर ज़ियालत सलंजार समूरे सिंध सूबे अंदरि कलम 144 में हिकु महीने जी वाधि करे छॾी।

0: समेत मुख्तलिफ बीमारियुनि जे पखिड़जण जा ख़तरा वधी वञनि था। केतिरनि ई इलाइक़नि में किचरो वक़्त सर न खजण सबबि माहौलियाती आलूदगी बि वधी रही आहे। बलदियाती इदारनि जी ज़िमेवारी आहे त हू बाक़ाइदा सफ़ाई, किचरे जो बरवक़्त नेकाल, साफ़ पाणीअ जी फ़राहमी, नालनि जी सफ़ाई, रस्तनि जी मरम्मत ऐं स्ट्रीट लाइट जी सार संभाल खे यकीनी बणाइनि। साॻे वक़्तु तरक़ियाती फंडनि जी शफ़ाफ़ इस्तेमालु ऐं अवामी शिकायतुनि जे फ़ौरी अज़ाले ते बि ध्यानु ॾिनो वञे। पर सुधारो सिर्फ़ हुकूमत जी कोशिश सां मुमकिन नाहे, शहरनि जूं बि अहम ज़िमेवारियूं आहिनि। अवाम खे घुर्जे त कचरो रस्तनि ऐं नालियुनि में उछलाइण बदिरां मुक़ररु हंधनि ते विझनि, सफ़ाई मुहिमुनि में भरपूर हिसो वठनि, पाणीअ जी गैर ज़रूरी ज़ाया थियण खां पासो कनि, सरकारी मिल्कियतुनि जी हिफ़ाज़त कनि ऐं कंहिं बि ख़राबी या मसइले बाबति लाॻापियल बलदियाती इदारनि खे बरवक़्त आगाह कनि। सुधारनि जे लाइ कुझु अहम तजवीज़ूं आहिनि। हर शहर ऐं ॻोठ में बाक़ाइदा सफ़ाई जो शेड्यूल तयारु करे उन ते सख़्तीअ सां अमल करायो वञे। नाले जी सफ़ाई बरसातुनि खां अॻु मुकमल कई वञे। जदीद किचरो गॾु करणु ऐं नेकाल जो निज़ाम मुतारिफ़ करायो वञे। शहरनि लाइ शिकायतूं दाख़िल कराइण जो आसान ऑनलाइन ऐं हेल्पलाइन निज़ाम क़ाइमु कयो वञे। स्कूलनि, कॉलेजनि ऐं मीडिया ज़रिए सफ़ाई ऐं शहरी ज़िमेवारियुनि बाबति आगाही मुहिम हलाई वञे। बलदियाती इदारनि जी कारकर्दगी जी बाक़ाइदा निगरानी कई वञे ऐं गफ़लत कंदड़ अमले ख़िलाफ़ क़ानून मूजिबि कार्रवाई कई वञे। जेकॾहिं हुकूमत, बलदियाती इदारा ऐं शहरी गॾिजी पंहिंजूं ज़िमेवारियूं निभाइनि त सिंध जा शहर ऐं ॻोठ वधीक साफ़, सिहतमंद ऐं रहण लाइक़ु बणिजी सघनि था। साफ़ सुथिरो माहौल सिर्फ़ हुकूमत जी ज़िमेवारी न पर हर शहरीअ जी गॾियल ज़िमेवारी आहे। हीउ हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब ख़ान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मा अख्तियार 3S डीलर। आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।